पंडो अनकबीरी समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम की सजन सुहेले रखो रखन हार दयाला नानक करके गोले तनासरी महला पंजवा पूजा वर्त तिलक इस नाना

दुतिया पाओ निवार, बंधन काट लियो अपने कार, कभू न आवे हार। तेरी शरण पया हो जीवा, तू समरथ पुरख मेहरबान। आठ पहर प्रभु को आराधी नानक।

आप प्रभ राख ले हो, हम ते किशु न होए मेरे स्वामी, पर कृपा अपना नाम दे हो, रहाओ अगर कुटुंब सागर संसार

फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया आन सगल बिद काम न आवे हर हर नाम त्याया ताते मोय धारी ओड़ गोपाल सरन परयो पूर्ण परमेसर बिनसे सगल जंजाल रहाव सुर्ग मृत पयाल भूमंडल सगल ब्यापे माए जी उदाहरण सब कुल तारन हर हर नाम त्याए नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्ब निधाना।

सदगुर प्रसाद छोड़ जाए से करे पराल कामन आवे से जंजाल संग न चाले तिन संहीत जो बैराई से ही मीत ऐसे परम पुले संसारा जन्म पदार्थ खोए गुवारा रहाओ ताज तर्म नहीं पावे डीठा तूड़ तो सो रच्यो मीठा ताद प्यारी विसरिया दा तारा जाने ना ही मरण विचारा वस्त पराई को उठ रोवे कर्म तर्म सगलाई खोवे हुक्म ना बूझे आवन जाने पाप करे ता पछोताणे जो तु पावे सो परवान

पर मंगना। देखो पसार नयन, सुनो साधु के बयन, प्राण पद चित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चो अरस पोग करत अनेक, बिखिया विकार दिख सगल है फीके। एक गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जान, तान तन अपन थाप्यो, हार जप न निमुख जाप्यो। अर्थ द्रव देख काच संग ना ही चलना, या कोरे कर्म पला तिन ओढ़ गई संत पल्ला। तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना, पायो रे परमन धान मिट्यो है अवमान। एक निरंकार नानक मन लगना, तनासरी महला पंजवा कर सतवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, कल कलेस लो मोह मा पौजल तारे रहाओ। सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे, साध संग जपन संग मन निधान तारे। चरण कमल नमस्कार कुन गोबिंद बिचारे, साजना की रेन नानक मंगल सुख सुधारे। तनासरी महला पंजवा कर अठवा, दो पदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद। सिमरो सिमर सिमर सुख पाव, सास सास माले। हे लोग परलोक संग सगाई, जद कदम होए रखवाले। गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे। पाए ना साके जाले हरहाओ, निर्तन कौ तन अंधले कौ टेक। मार दूध जैसे बाले, सागर मैं भोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। तनासरी महला पंजवा, पै कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय संचाई। नाम निध रिद सिद्ध, हर लागर ही जन पाई। संतन को आनंद सगल ही जाई, गृह बाहर ठाकुर भगतन का। हरावर या सर्वठाई रखाओ, ताको कोई न पहुंचे नकारा। जाके आंग कुसवाई, जमकी त्रास मिटे जिस सिमरत, नानक नाम त्याई। तनासरी महला पंजवा, दर्भवंत दर्भ देख गर्भ, पूर्णवंत अभमानी। राजा जाने सगल राज हमारा, त्यो हर जन टेक स्वामी। जे को अपनी ओट समारे, जैसा बित तैसा होए वर्त, अपना बल नहीं हारे। हरहाओ आन त्याग पै इक आसर, शरण शरण कर आए। संत अनुग्रह पै बन निर्मल, नानक हर गुण गाए। तनासरी महला पंजवा, जा को हारंग लागो इस जुग में, तो कई इत गए सूरा। आत्म जिने सगल वसता के, जा का सदगुर पूरा। ठाकुर गाई गए आत्म रंग।

गए प्रव्यापने सुख पायो दिन रात तनासरी महला पंजवा पर हरना लोभ चूड़ निंद ए भी करत गुदारी मृत सिंह आस मिथ्या मीठी ए टेक मने साधारी सागत की आवरदा जाए बिरतारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवाव काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़ अंध नानक प्रकाड साध जना संगारी तनासरी महला पंजवा सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना शीतल तन मन शाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी

देखो तै तै स्वामी कोई न पहुंचन हार, जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत शार। करन हार खवाला होवा जाका अंत न पारावार, नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक।

तिसन अगन प्रव्याप बुझाई नानक उदरे प्रव शरणाई तन्हा श्री महला पंजवा। तृप्त भई सज भोजन खाया मन तरसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रखाओ अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ आस असवारी।

समुद्र सागर जिन खिन में तारा रहाओ, कोई हुआ क्रम रत कोई तीर्थ नाया, दासी हर का राम ते आया, बंधन काटन हार स्वामी, जन नानक सिमरै अंतर जामी।

साधो यो जग परम भोलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुध बनता।

दुख भंजन तासु मना लगाना। जन नानक कोटन मैं किन्हू गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नावा ते जोगी को जुगतना जानो। लोभ मो माया ममता फोन जे कड़माए पछानो। अरहाव पर निंदा उस्त न जाके कंचन लोस मानो। हरग सोगते रहे अतीता जोगी ताए बखानो। चंचल मान दहत को तावत अचल जाए ठहरानो। ओ नानक ए बिद को जो नर मुक्त ताए तुम मानो। तनासरी महला नामा आप मैं कौन उपाव करो। जेवद मन को संसार चूके।

त्यावक बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल न जाए रहाओ। रख रख चरण तरे विचारी दुबदा छोड़ पे निरंकारी मुक्त पदार्थ हरस चाखे आमन जान रहे गुर राखे सर्वर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सर्वर मैं हंस हंस मैं सागर अकत कथा गुर बचनी आदर सुन मंडल एक जोगी बैसे नार ना पुरख कहो को कैसे तिर पवन जो तरहे लिव लाई सुर नर नाथ सचे सरनाई आनंद मूल अनाथ आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वशल पे काटन हारे होमे मार मिले भगतारे आनक जन कर काल संताए मर न लखाए मंडल में आए जन्म पदार्थ दुबधा खोवे आप न चीनस प्रम प्रम रोवे है तो पढ़तो सुन तो एक तीर्ज धर्म तरणी तर टेक जत स संजम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए साचे निर्मल मैल ना लागे गुर कै शब्द परम पौ पग तूरत मूर्त आद अनूप नानक जाचे साज स्वरूप तनासरी महला पहला सहज मिले मिले या परवान ना तिस मरण ना आवन जान ठाकुर मैं दास दास मैं सोए जय देखा ते अवर न कोए गुरमुख भगत सहज कर पाइये बिन गुर फेटे मर आइये जाइ।

परम ध्यानी साच साचे भाव आनंद अनदन हरख साचा दुख किल विख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नामणु गावे गावन हार शब्द सुहावणु सारा ही सचे मन सदगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नहावे देनी ता संगम सत सते आराध एकंकार साचा नित दे चढ़े सवाया गद संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कहे सब कोय के बड़े आखिए ओ मूर्ख नीच अजान समझा साखिए सच गुर की साखी अमृत भाखी तित मन मान्या मेरा पूज करे आवे विख लादे शब्द सचे गुर मेरा आखण तोट ना भगत पंडारी भार पुर रहे आसोई नानक साच कहे बेनंती मन मान जाए सच सोई।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करे प्रभ सचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण किरस्यों प्रीत प्यारी फिर कर सोहे ना।

में नाही पगलग राम रहे सरनाही तिनते पैर पैर ते करिया आप कटे तन छीजे काल अहेरी फिरे बदक ज्यो कहो कमन बिद कीजे सोधन आमन लागा माल पिता भाई सुध बनता कहो पोहे का अरहाओ जब लग जोत काया मैं बरत आपा पशु न बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कशु न सूझे कहत कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो मन के परमा केवल नाम जपो रे प्राणी परो एक की सरना जो जन पाओ पगत कह जाने ताको अचरज काहो ज्यों जा जल में पैसन निकसे त्यों तुर मिलो जुलाहो हर के लोगा मैं तो मत का पोरा जो तन कहसी तजे कबीरा रमैये।

जो होई इंद्र लोक शिव लोक के जैबो उसे तब कर बाहर आयबो क्या मांगो कुछ सिर नाही राम नाम रख मन माही रखाओ सोभा राज विभ बड़ियाई अंत न काहू संग सहाई पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया इनते कहो कमने सुख पाया कहे तो कबीर अवर नहीं कामा अमरे मन थन राम को नामा राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाई राम नाम सिमरन बेन बूढ़ते अधकाई रहाओ बंता सुधे गृह संपद सुखदाई इनमें कुछ नागे तेरो काल अवध आई अजामल गजगन का पद कर्म कीने तेव उत्तर पार परे राम नाम लीने कूकर कूकर जोन परमे तऊ लाज न आई राम नाम शाड़ अमृत ताहे बेख खाई तज परम कर्म विदन खेद राम नाम लेही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही।

किरपयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, सरवन बाणी तुजस पूर राखो, मन सुमद कर करो चरण हिरदे धरो, रसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन कटे, मैं तो मोल महगी लई जी सटे, परहाओ सा संत बिना पाओ नहीं उपजे, पाविन भगत नहीं होए तेरी, कै रविदास एक बेनती हरस्यो, पैज राखो राजा राम मेरी, नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे, अरहाओ नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे, नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो, जपे नाम ले तुझे कोचारे, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माए पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे, नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारे सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या अर्पो, नाम तेरा तुही चबर ठोलारे, दस अठा अड़सठ चारे खानी, एह वर्तन गए सगल संसारे, कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे, तनास

जंगम जाती तायो तूप दीप नहीं बेदा तायो पूजो पाती ताया वो खंड खोजते नविंद पाई ना कछ आए वो ना कछ

आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुनकर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मिल हो, गुर मिले हर ओ महाराम। तार कीर्त जस अगम अथाह, खिन खिन राम नाम गावा। मोको तार कृपा मिली गे गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा। मन राम ना पीना ले लाहा, किन किन भगत करे दिन राती। गुरमत भगत ओ महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा। मन तन जीत शब्द ले लाहा, गुरमत पंच दूत बस आवे। मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा। हर गुण गाय सदा ले लाहा, दीन दयाल कृपा कर माधो। हर हर नाम ओ महाराम, जप जग जीत जपो मन माहा। हर हर जगन्नाथ जग लाहा, तन तन वड्डे ठाकुर प्रा मेरे। जप नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी।

अवस्तो ईसो ही पावो आशा मनसा पूरव जब प्रभ कहो और प्रसाद नानक मन वसया दुख न कबहू चूरव बुझ प्रभ कहो जैत

दूख आराधन दूख आराधन बिसरे ना काहू बेरा नाम जगत कोर सूर उजारा बिरसे परम अंधेरा थान थनंतर सब नहीं जाई जो दिसे सो तेरा तंत संग पावे जो नानक जिस बौर न होई है फेरा। जय तसरी महला पंजवा कार चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद आव मैं सुख पायो गुर आग तजी स्यान बचिंत सारी अंग छोड़ो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोय मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जब छोड़ी मोहरी लाग तेरे ओ सागर पापक को जो संत फेटे वड़ भाग जन नानक सर्व सो पाए मोरो हर चरणी चित लाग। जय तसरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान करा त्रिड़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभु जीव माया करा रहाओ काल जल अरमा जंजाला छुड़के जमे डरा आयो दुख हरण शरण करना पत कयो चरण आसरा नाव रूप पयो सल संग पंध पार परा आप्यो पियो गातियो परमा को नानक अजर जरा। जय तसरी महला पंजवा जाको पहे गोविंद सहाई दुख सहज आनंद सगल स्यों वाको व्याध न काई रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा न व्यापे उन्माई एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई दया माया कृपा ठाकुर की से ही संत सुपाई तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई। जय तसरी

जाको जोगी खोज तहारे पायो नाए ते पारा तो स्वामी तुम निट पछानो रूप रेख ते न्यारा पामर नाम जगत में हर को कभू नाए संभारा नानक सरण पर्यो जग बंधन राखो बिरद तुहारा जय तसरी महला पंजवा शांत कर पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद श्लोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अन दिन नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संगमीत शांत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया इस मोहन लाल प्यारे हों फिरो खो जंतिया ते दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे नैन हमारे प्रे रंग रंगारे एक तिल फीना थीरीजे प्रसो मन लीना ज्यो जल मीना क्यात विदिवे तसंतिया जन नान गुर पूरा पाय तगली तिखा बुझंतिया यार वे प्रे हब्बे सगिया मुँह कई ना जइया यार वे एक डू एक चाड़े होके चेतिया एक डू एक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुणतासा किन्नी मैंडा लाल रीझाय हौस आगे मन ढेइया नानक कहे सुन बिनो सुहागन मूंद डिखा पिर कहिया यार वे तेरे आपन फाणा किश नी सी छंदा यार वे तेरा व्या लालन मूह तद संदा लालन ते पाया आप गवाया चेतन भाग मथाणे बां पगड़ ठागर हो कि दी गुण अवगुण ना पछाणे गुण हार ते पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बू के सुहंदा जन नानक तन सुहागन साई जिस संग पतार वसंदा यार वे नित सुख सुखेंदी था मैं पाई वरलोड़ी दा आया वजी वाधाई महामंगल रहसतिया फिर दयाल सदना वरंगिया वड़ भाग पाया गुर मिलाया साध के सत्संगिया आसा मनसा सगल पूरी प्रे अंक अंक मिलाई बिनवंत नानक सुख सुखेंदी था मैं गुर मिल पाई जय तसरी महला पंजवा कर दूजा शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद स्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कसन न जाए अकत नांग प्रसरणागति रखन को समरथ शांत जो जानो त्यों राख हर प्रो तेरिया केते करो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रसर फूलिए मोह मगन विकराल माया तो प्रसादी कूलिए लोक करत विकार बिखड़े प्रभ नेर हूते नेरिया बिनवंत नांग दया तारो ताड़ पव जल फेरिया श्लोक निरतन पवे असंख गुण

प्रभु छूटन लाग नरक समझिए हो कृपाल दयाल नानक पौ पंजिए तलोक नच रा सुख मिष्टंग नच पुगरस मिष्टंग नच मिष्टंग सुख माया मिष्टंग सा संग हर नानक दल मिष्टंग प्रभ दर्शन लगड़ा सो नेहो मन मजाहू रत्या विदड़ो सा थोक नानक मिठा सो तणी पौड़ी हर बिन कछु न लाग गई भगतन को मीठा आन स्वासा फीकया कर निरनौ डीठा अज्ञान परम दुख कटया पुर पए बसीठा चरण कम मन बेदया जो रंग मजीठा जियो प्राण तन मन प्रभु फिर से सब झूठा त्रोक तिगत जलंग न जीव मीनंग न त्याग चात्रक मेघ मंडल बाण विधंच पुरंक नादंग हल बंधन कुसुम बासन चरण कमल रचंत संत नानक आन नारोचते मुख डिखाऊ पलक छड आन डेऊ चित जीवन संगम ते तनी

नाद को रंग के बेदया सन्मुख उड़तावे पवर लोभी कुसुम्बास का मिल आप बंधावे तू संत जना कर प्रीत है देख दर्श अघावे श्लोक चितवंत चरण कमलं सास सास आराधन नय विश्रांत नाम अच्युत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है सीतड़ा मन मजावे पलक न थी वे भारा नानक आसड़ी निभावे सदा पेखंदो सच तणी पौड़ी आसावंती आस कुसाई पूरी है मिल गोपाल गोविंद ना कब हो चूरी है त्यो दर्श मन चाओ ले जाए वे सूरी है कोई पवित्र शरीर चरना तूरी है पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरी है श्लोक रसना उच्चरंत नामं सर्वणं सुनंत शब्द अमृत है नांग तिन सद बलिहारं जिन्ना त्यान पार ब्राह्मण हब कूड़ा वे कम एक साई बारे नांग से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावे प्रामत्था हर्ज लिखे बेअंत सोह है से हत्था चरण पुनीत पवित्र चाले प्रापत्था संता संग उधार अगला दुख लत्था श्लोक पावी अदोद करण आरमण संजोग पूर्ण है गोपाल दस पेटं सफल नांग सो मुहूर्त तीव न सक्का पाए सुख मिति हु बारे नानक सावे लड़ी परवान जित मिलंदड़ो मा प्री पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई तो मूर्त परा संजोग है जित मिले गुसाई आड़ पैर हर त्याय कै मन इच्छ पुजाई वड़े पाग सत्संग होए निवलागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई श्लोक पत पुनीत गोविंद है सर्व दुख निवारण है तरण सूर भगवान है जे पंत नानक हर हर हरे छड्यो हबे आप लगड़ो चरणा पास नटड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदिया पौड़ी मेल लेहो दयाल तय पय द्वारिया रख ले वो दीन दयाल प्रमत बो हारिया भगत विशल तेरा बिरद हर पत उधारिया तुझ बिन नाही कोय बिनो मोय सारिया कर गए लेहो दयाल सागर संसारिया श्लोक संत उदरण दयालं आसरं गोपाल कीर्तन निर्मलं संसंगेन ओट नानक परमेश्वर चंदन चंदन सरद रुत मूल न मिटई काम तीतल तीवे नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओढ़ उदरे सगल जान तुण प्रताप गोविंद निरपो पय मन तोट न आवे मूल संत्या नाम तान संत जनासो संग पाइये वड़े पुन आड़ पैर हर चाहे हर जस निरसुन श्लोक दया करण दुखरण उच्चरण नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिवत न माया पाए बलंदड़ी बुल गई रखंदड़ो

बेप्रवाह सदारंग हरक क्या को पाख स्वामी रहाओ। ऊच सुमाना ठाकुर तेरो अवर न कहू तानी, ऐसो अमर मिलो भगतन को राज रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा मर हर जने नहीं निकटानी, निरप हो रहे लेव एक नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी, ताको तोखा कहां व्यापे जाको ओढ़ तुहारी। अरहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी, गुण निधान गुण तिन ही गाए क्या को कृपा तारी। तो सुहिया तन उस जन्मा नानत बलिहारी। टोडी महला पंजवा हर दूजा चौपदे एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद। तायो रे मान दह दिसतायो, माया मगन स्वाद लो मोयो, तिन प्रभ आव पुरायो। रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यों, एक मोतन यो मन लायो। बिगसो पेख रंग सुंब को पार ग्रे जो होन जायो। चरण कमल स्यों पाओ न कीनो, नय सद पुरख मनायो। ताकत को तावे बो पाती क्यो तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान न कियो, एक निमख न कीर्त गायो। नाना झूठ लाए मन तोखयो, न बूझो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए, नहीं सतगुर सेव थे आयो। पंच दूत राज संगत गोष्ट मतवारो मधमायो। करो बेनती साध संगत हर भगत बछल सुन आयो। नानक पाग परोहर पाछ राख लाज अपनायो। टोडी महला पनवा मानुख बिन बूझे बिरथा आया, अनक साहसी गार बो करता जो मृत को ढाया। रहाओ ताए ताए कृपन श्रम कीनो।

नाम जात, नाम मेरी पत है, नाम मेरे परिवार है, नाम सकाई सदा मेरे संग, हर नाम मोको निस्तार है, बिखे बिलास सही तबो तेरे, किलत न कशु संगार है, इष्ट मीत नाम नानक को, हर नाम मेरे पंडार है, टोडी महला पनवा, नीके गुण गाओ मिटही रोग, मुख उजल मन निर्मल होई है, तेरो रह ईगा उहा लोग, हरहाओ चरण पखार करो गुरसेवा, मने चावो पोग, छोड़ आवत पाद अंकारा, मान सोई जो होग, संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग, पहो नानक एक बिन दूजा, अवर न करण जोग, टोडी महला पनवा, सदगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम घर शोभा, चिंता लाए हमारी, रहाओ अवर न सूजे दूजी ठहर, हार परयो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे, हम निर्गुण लेओ उबारी, सदभग सिंध सदा मेहरवाना, सबना दे आधारी, नानक दास संत पाछे परयो, राख लिहो ए बारी, टोडी महला पनवा, रसना गुण गोपाल निद गायन, सांत सहज रहस्यम उपजो, सगले दुख पलायन, अरहाओ जो मांगे सोई सोई पावे, शिव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दुहू ते छूटे, भवजल जगत तरायन, खोजत खोजत तत विचारेओ, दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाह जे नानक, सदा सिमर नारायण।

तब हर हर हर जस्यायु जन नानक कौ हर भेटे स्वामी दुख होमे रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जुगज करे सो आपे।

जप मन राम नाम निस्तार, कोट कोट अंतर के पाप सब खोवे। हर भवजल पार उतारा रघाओ, काया नगर बस्त हर स्वामी। हर निर्भव निर्वैर निरंकारा, हर निकट बस्त कछ नजर न आवे। हर लादा गुर विचारा, हर आपे सहो सराफ रतन हीरा। हर आप किया पासारा, नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे। तो सहो सचा बणजारा, बैराड़ी महला चौथा। जप मन हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याये सुखदाता। जाका अंत न पारा वारा, रहाओ अगन कुंट में उर्ध लिव लागा। हर राखे उदर मंजारा, सो ऐसा अगर सेव हो मेरे मान। हर अंत शिडामन हारा, जाके हृदय बसया मेरा हर हर।

न पावे, विण कर्मा किश पाइये नाही, जे वो तेरा तावे। लब लोभ अंकार की माती, माया माए समाणी, इन्नी बाती सो पाइये नाही, भई कामण एयाणी। जाए पुछो सुहागणी वाहे, किन्नी बाती सो पाई है, जो किश करे सो भला कर मानिए, हिकमत हुक्म चुकाइए।

ऐसा परमल लाइए एव कह सुहागनी पैणे किन्नी बाती सो पाइये आप गवाएगे ता सो पाइगे और कैसी चतराई सो नदर कर देख सोधन लिख कामण नौ निद पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागन नानक सा सबराई ऐसे रंग राती सहज की माती अहे निस पाए समाणी सुंदर साए स्वरूप चखण कहिए सास।

गुरु साबास है हर देश स्नेहा औ वेख वे गुरु विकसया गौर सदगुर देखा गोरसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जेन सुन सिखा गुरमनिया तिना पुख सब जावी हर का मार्ग आखिए तो कित बद जाइए हर घर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आरा दया सेसा वरदाने हौ सतगुर को सदवारिया गुर भजन समाने तू ठाकुर तू साहिब तू है मेरा मीरा तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे।

निर्दिनमय प्राणी छिन छिन औद विहाक है, फूटे कड़जो पानी हराव हर गुण गए ना गाव ही। मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कै न मरन पछाना, आजू काज बिगड़ो नहीं जो प्रभ गुण गावे। कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे, तिलंग महला नामा जाग लेहो रे मना जाग लेहो। कहां गाफल सोया जो दिन उपजिया संग ही, सो ती संग न होया रहाओ। माग पिता सुध बंद जा हित जा सो कीना, जियो छूट्यो जब देत डार अग्न मैं दीना। जीव तलो व्योहार है जाको तुम जानो, नान खर गुण गाए ले सब सुफन समानो। तिलंग महला नामा हार जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है। कहो मान ले मेरो अरहाओ, संपत रतन राश्यो आत्मनिहो लगायो। काल फास जब गल परी

तेरा नाम है अधारा अरहाव करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर दर पेश तू मनी दरियाओ तू देहंद तू विशियार तू तनी देह लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे ते स्वामी बगसंद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बाल बल जाओ हौ बल बल जाओ नीकी तेरी बेगारी आले तेरा नाओ अरहाओ कुजा आमत कुजा रवती कुजा मेरवी द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी।

तीर्थ मल मल नहाए, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, जे को भय अलाए अरहाओ, जैसा भी जे सोलने, जो खट्टे सो खाए, अगे पुछ न हो गई, जे सण निशाने जाए, तैसो जैसा काढ़िए, जैसी कार कमाए, जो दम चित न आवई, सो दम बिरथा जाए, यो तन वेची बै करी, जे को लए विकाए, नानक कम न आवई, जिद तन नाही सच्चा नाओ। सूही महला पहला, कार सतवां, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, जोग ना खिंता, जोग ना डंड, जोग ना पसम चढ़ाई है, जोग ना मुंदी मूड मुड़ाए है, जोग ना सिंगी वाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुगत एव पाई है, गल्ली जोग ना होई, एक दृष्ट कर समसर जाने, योगी कही है सोई रहाओ, जोग ना बाहर मड़ी मसानी, जोग ना ताड़ी लाई है, जोग ना देद संतर पवे है, जोग ना तीर्थ नाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुग तिव पाई है, सतगुर भेटे ता सहसा टूटे, धावत वरज रहाई है, निजर चरे सह तुन लाग, करगी परचा पाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुग तिव पाई है, नानक जीव ते अमर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजों सिंगी वाजे, तौ निरभौ पल पाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुगत तौ पाई।

तू आपे सर्व समाना रहाओ, मन तारा जी चित तुला, तेरी सेव सराब कमावा, घट ही पीतर सो सो तोली, तेन विध चित रखावा, आपे कंडा तोल तरा जी, आपे तोलनहारा, आपे देख आपे बूज, आपे है बणजारा, अंदुला नीच जात पर देसी, खिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नान करहेंदा, क्यों कर मूड़ा पावे, राग सूही

अनक तरंगा, कनक भूखन कीने बहु रंगा, बीज भी देखो बहु प्रकारा, फल पाके ते एकंकारा, सहस कठा में एक आकाश, कड़ फूटे ते ओई प्रगास, परम लोभ वो माया विकार, क्रम छूटे ते एकंकार, ओ अविनाशी बिन सतनाही, ना को आवे ना को जाही, गुर पूरे होमे मलक होई, तो नानक मेरी परम गत होई, सूही महला पंजवा, कीता लोड़े सो प्रभ होए, तुज बिन दूजा नाही कोय, जो जन सेवे ते पूर्ण काज, दास अपने की रखो लाज, तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुज बिन कमन करे प्रतपाला रखाओ, जल थल महियल रहया भरपूर, निकट बसे नाही प्रदूर, लोक पतियारे कछु न पाईए, सज लगे ता होमे जाइए, जिसनु लाय ले सो लागे, क्या रतन अंतर ते जागे, तोमत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए, तोय कर जोड़ करो अरदास, तू पावे ता आने रास, कर कृपा अपनी भगती लाए, जन नानक प्रसदा ते आए, तू ही महला पंजवा, तन सुहागन जो प्रभु बुशाने, मन हुकम तजे अभमान, प्रेस्यो राती रलिया माने, तोन सखिए प्रभ मिल निशानी, मन तन अर्प तज लाज लोकानी रखाओ, सखी सहेली को समझावे, तोई कमावे जो प्रापावे, सा सुहागण अंक समावे, गर्भ गहेली महल ना पावे, फिर पछतावे जब रहन बेहावे, कर्महीन मनमुख दुख पावे, बिनों करी जे जाना दूर, प्रभ अविनाशी रहया भरपूर, जन नानक गावे देख दूर, सूही महला पंजवा, गृह वस गुर कीना हो कर कीनार, दादासी कर दीनी पतार, सगल समग्री मैं कर की जोड़ी, आस प्यासी पिर को लोड़ी, तामर कहां गुण कंत प्यारे, सुगुण स्वरूप दयाल मुरारे रखाओ, तसीगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम तंबोल मुख खाया, कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तान ससुख पावे या फिर खरे आवे, गुण कामन कर कंतरी जाया, वस कर लीना गुर परम चुकाया, तब ते ऊंचा मंदिर मेरा, तब कामन त्यागी प्रयो प्री तुम मेरा, प्रगटया सूर ज्योत उजियारा, तेज विशाई सरद अपारा, नाव रंग लाल तेज रामने आया, जन नानक तिर तान मिल सुख पाया, सूही महला पंजवा, ओम क्यों ही ओ मिलन प्रताई, खोजत चरयो देखो प्रे जाई, सुनत संदेशरो प्रे गृह सेज बचाई, प्रम प्रम आयो तो नजर न पाई, केन बद ही रो धीरे न मानो, मिल साजन हो तुझ कुर्बानो रखाओ, एकता से विजी तन कंता, तन सूती पिर सद जागंता, पियो मदरो तन बतवंता, तन जागे जे पिर बोलंता, पई नरासी बहुत दिन लागे, देश संतर मैं सगले जागे, खिन रहन ना पावो बिन पग पागे, होए किरपाल प्रा मिले सुभागे, पयो किरपाल सत्संग मिलाया, बूझी तप्त करे पिर पाया, सगल सीगार हुन मुझे सुहाया, कहो नानक गोर परम चुकाया, जय देखा ते पिर गए पाई, खोल्यो कपाट ता मन ठहराई, अरहाओ दूजा तू ही महला पंजवा, क्या गुण तेरे सार संभाली, मुए निर्गुण के दातारे, बै खरीद क्या करे चतुराई, इहो जीव पिंड सब थारे, लाल रंगीले प्रीत मन मोहन, तेरे दर्शन को हम बारे, अरहाओ प्रभ दाता मुए दीन तिहारी, तुम सदा सदा उपकारे, तो किश नाही जे मैं ते होवे, मेरे ठाकुर अगम अपारे, क्या सेव कमावो क्या कहरी जावो, बिद किद पावो दरसारे, मित नहीं पाईये अंत न लइये, मंत्र से चरणारे, पावो दान तीठ होए मांगो,
ਮੁਖ ਲਾਗੇ ਸੰਤਰੇ ਨਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਪ੍ਰਭਾ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਰ ਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੇਵਾ ਥੋਰੀ ਮੰਗ।

अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कहे मुख राता, कहो नानक प्रभु बिनो सुनीज, कुचल कठोर

लोभ मोहे बाधा मां गर्त मैं निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय दूपत पाहन प्रभ मेरे लीजे सूही महला पंजवा जीवित मरे बुझे प्रभ सोए इस जान कर्म प्राप्त होए सुन साजन यों दुत्तर तरी है मिल साधु हर नाम उच्चरिये रखाओ एक बिना दूजा नहीं जाने घट घट अंतर पार ब्रह्म पछाने जो किछ करे सोई फल माने।

पंजवां से संजोग करो मेरे प्यारे जे तरसना हर नाम उचारे सुन बेनती प्रवदीन दयाला सार गावे गुण सदा रसाला रहाओ जीवन रूप

तुम ही प्रतपाला जियो पिंड सब तुमरा माला अमृत नाम चले जपनाला नानक जाचे संतर वाला सूही महला पंजवा किस बिन दूजा अवर ना कोई आपे थम्मे सच्चा सोई हर हर नाम मेरा आधार करण कारण

पूरे भाग प्राप्त होई। अरहाओ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोनी दूता लाई प्रेम शोभा करत कसाई। निर्दय जंत दया न पाई, अनक जन्म बीतियन फरमाई। तरवास न देवे दुत रमाई, दिन रैन अपना किया पाई। किस दोष न दीजे किरत पवाई, सुन साजन संत जन पाई। चरण सरण नानक गद पाई, अराग सूही

पास बेनंती तेरे जाना देखण पावा सूही महला पंजवा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करणे हारा चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन कौ बलिहारा मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रही है तुद पावे ता नाम जपाव है सुख तेरा दिता लही है रहाओ मुक्त भुगत जुत तेरी सेवा जिस तू आप कराए तहां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा तू आपे सरदा लाए सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सदगुर दीन दयाला कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया नानक कहो प्रापए कृपाला सदगुर पूरा पाया तू ही महला पंजवा तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरै सो मर जाए दयाल होवे जिस ऊपर करते सो तुद सदा थे आए मेरे साहेब तू मैं मान ने माणी अरदास करी प्रभ अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी बाणी अरहाओ चरण तूड़ तेरे जन की होवा तेरे दर्शन कौ बल जाई अमृत भजन दे उरकारी तौ कृपा ते संग पाई अंतर की गात तुझ पैसारी तुझ जेवड़ अवर ना कोई जिसनु लाए लाए सो लागे भगत तुहारा सोई दोए कर जोड़ मांगो एक दाना साहेब तुठे पावा सास सास नानक आराध्य आठ पैर गुण गावा सूही महला पंजवा जिसके सिर ऊपर तू स्वामी तो दुख कैसा पावे बोल ना जाने माया मद

तेरे सेवक कौ पौ किछ नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ, जो तेरे रंग रते स्वामी, इनका जन्म मरण दुख नस, तेरी बख्स न मेटे कोई, सतगुर का दिलासा, नाम ध्यान सुख पर पायन, आड़ पैर आराध है, तेरी शरण तेरे परवास है, पांच दुष्टले सद है, ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जेन कल राखी मेरी, सूखी महला पंजवा, सगल त्याग गुर सरणी आया, रखो रखन हारे, जित तू लावे तित हम लागे, क्या ए जंत विचारे, मेरे राम जी तू प्रवेंतर जामी, कर कृपा गुरुदेव दयाला, गुण गावा नित स्वामी, अरहाओ आठ पैर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पोतरी है, आप त्या होइए सब रेणा, जीवत्या इं मरिए, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नव जापे, सगल मनोरथ तिसके पूर्ण, जे दया करे प्रवे आपे, दीन दयाल किरपाल प्रस्वामी, तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजे, नानक साधर वाला, राग सूही अष्टपदिया, महला पहला कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

वाला सेवीए सच्चे स्यों चित लाए जी और हाव चारे कुंडा जे पवे बिन भागा तन नाहे जियो अवगण मुठी जे फिर बदक थाए ना पाहे जियो गुर राखे से उबरे सबदर ते मन माहे जियो चिट्टे जन के कपड़े मैले चित कठोर जियो तेन मुख नाम ना उपजे दूजे व्यापे चोर जियो मूल ना बूझे अपना से पशुआ से टोर जियो नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो करता चित न आवई फिर लगे दुख जियो।

मैला जल फिर मर जमे वारो वार पय किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सराही सच मान दर सचे सत्यार गुर पूरे पूरी मत है।

ओंकार सदगुर प्रसाद मिथन मोह अगन सोग सागर कर कृपा उदर हर नागर चरण कमल सरनाए नारायण दीना नाथ भगत परायण अरहाओ अनाथा नाथ भगत पय मेटन साध संग जम दूत ना पेटन जीवन रूप अनूप दयाला रम गुणा कटिये जम जाला अमृत नाम रसन नित जापे रोग रूप माया ना व्यापे जब गोविंद संगी सवतारे ओत नाही पंच बटवारे मान भय क्रम प्रभ एक ते आए।

गुर ज्ञाने सत संतोख सदा सच पल्ले सच बोले तिर पाए नानक विछड़ना दुख पाए गुरमत अंक समाए राग सूही महला पहला शांत कर दूजा एक ओंकार सदगुर प्रसाद हम कर सजने आए साचे मेल मिलाए सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया आन दिन मेल पया मन मानिया कर मंदर सोहाए पंच शब्द

चौक नेरा सुन प्रमेर मैं तेरा परवस दर्शन देख पई ने केवल जन्म मरण दुख नस सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुभाए नानक साजन कौ बल जाइए साच मिले कर आए कर आएड़े साजना ता तन करी सरसी राम हार मोहेड़ी साच ठाकुर देख रहंसी राम गुण संग रहंसी खरी सरसी जा रवि रंग रते अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विधाते तस्कर मारवसी पंचायण अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तार गुरमत मिले प्यारे वार पाएड़ा बालड़िए आस्था मनसा पूरी राम तिर रावेड़ी शब्द रली रव रहया ने दूरी राम प्रा दूर न होई कड़कड़ सोई तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे ज्यो ते दीव डियाई अमर अडोल अमोल अपारा गुरपूरे सच पाई है नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़िए मारड़िए त्यो लोवा सिरता जा राम हाँ विष्णु पई देह गुणा अनहद शब्द अगा जा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानों।

चाय मन वजी वधाई। जब साजन सुने कर आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल सिखाई नानक कृपा करके मिले विछड़ कदे ना जाई। सूगी महला चौथा हर पहलड़ी लाव, प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जीओ, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जीओ, धर्म दृढ़ हो हर नाम ते आओ, सिमरत नाम दृढ़ाया सदगुर गुर पूरा आराध हो, तब केलविख पाप गवाया, सहज आनंद हुआ वडभागी, मन हर हर मीठा लाया, जन कहे नानक लाभ पहली आरंभ काज रचाया, हर दूजड़ी लाभ सदगुर पुरख मला।

नदर प्रभु सत्संग हार मंगल रस रसन रसाय नारक नाम परगस अंतरतन विचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसवते पाया जो प्रभु कहे सोई पर कीजै नानक अंक समाया हर प्रभु काज रित्याया गुरमुख वियाहने आया वियाहने आया गुरमुख अर पाया साथन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सचा ना कदे मरे ना जाई राग सूगी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे घर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सारागी साज शब्द लिवलाई अन दिन सहज रहे रंग राता राम नावृद पूजा नानक गुरमुख एक पछाण अवर ना जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रवंत्र जमी राम गुर शब्द रवे रव रहया हो प्रमेरा स्वामी राम प्रमेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सह सुमाईए तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभावा आपे लय मिलाए नानक सो प्रभ

एक सो सदा सद जीवई बलराम जियो तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सिरजनहारा जिते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रैन आस तुम्हारी सबल दर्श पेटिया गुरपूरा नानक सब बलिहारी समलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जीओ सतगुर मिलया दयाल गुण अवनासी गाया बलराम जीओ गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया सब दिवसे आए गय कंठ लाए मिले अंतर जामिया सत संतोख वजे वजे अनहदा चुनकारे सुन पय बिनासे सगल नानक प्रापुरख करणे हारे उपजा तत ज्ञान सहुरे पेये एक हर बलराम जियो ब्रह्मे ब्रह्म मिलया कोई न सके पिन कर बलराम जियो बिस्म पेख बिस्म सुनिए बिस्मादन नहीं आया जल थल मैयल पूर्ण स्वामी काट कड़ रहा सुमाया जिसते उपजत सुमाए सुमाया कीमत कहण ना जाए जिसके चलत ना जाही लखने नानक तिसे ते आए राग सूही शंत महला पंजवा कर दूजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद गोविंद गुण गावन लागे हर रंग अनदिन जागे हर रंग जागे पाप भागे मिले संत प्यारिया और चरण लागे परम भागे काज सगल सवारिया सुन श्रवण बाणी सहज जानी हर नाम जावड भागे बिनवंत नानक शरण स्वामी जियो पिंड प्रभ आगे अनहत शब्द सुहावा सच मंगल हर जस गावा गुण गाए हर घर दुख नसे रहस उपजे मन कणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुखपणा होए रेण साधु प्रभ अराधु अपने प्रभावा बिनवंत नानक दया धारहो सदा हर गुण गावा गुरमिल सागर तरिया हर चरण जगत निस्तरिया हर चरण त्याए सफल पाए मिटे आमन जाना पाए भगत सुभाए हर जप अपने प्रभावा जप एक अलख अपार पूरन तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर परम खोया जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ तिहाया सगल इच्छा पुनिया औ ताप बिनसे सदा सरसे प्रा मिले चिरी मिशुनिया मन सात आई वजी वधाई मनो कदे ना विसरे बिनवंत नानक सतगुर दरड़ाया सदा

की शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ कौ बलिहार नानक सतगुरु बाणा ऐसा गुर वड भागी पाई है जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के केलविख उत्तर है हर संत धूड़ी नित नापे राम हर धूड़ी नाइए प्रभु ते आई है।

सुन सुन इओ मन निर्मल होवे, कटिए काल की फासी राम, कटिए जम फासी सिमर अवनासी, सगल मंगल सो ज्ञान।

गुरमुखे सद करणी सारी, बिन से प्रम पै झूठा राम। अनहद बाणी गुरमुख वखाणी, जस सुन सुन मन तन हरिया। सर्व सुखा तिस ही बने आए, जो प्रभ अपना करया। कर में नवनिध परे पंडारा,

पाल गाओ नित सखी हो, सगल मनोरथ पाए राम, सबल जन्म होआ मिल साधु, एक अंकार त्याए राम, जप एक प्रभु अनेक रव्या, सर्व मंडल छाया, ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया, सा ब्रह्म दृष्टि आया, जल थल महियल पूर पूरन, तिस बिना नहीं जाए, देख दर्शन नानक बिसे, आप लए मिलाए, सूही महला पंजवां, आप चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे से ही फल पाए, तरते आप वसाया राम, तरते आप वसाया, सर्व सुख पाया, उत पाई सिख

दए दिस पूर रहे आजा स्वामी, कीमत कहन न जाई, कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन अचल नीव रखाई, ज्ञान त्यान पूर्ण परमेश्वर, हर हर कथा ने सुनिए राम, अणगल चोज भगत पा पंजन, अणगल वाजे तुनिए राम, अणगल चुनकारे तत् विचारे, संत गोष्ट नित होवे, हर नाम अराध है, मैल सब काट है, केल बग सगले खोवे, कै जन्म न मरना, आमन जाना, बौड़ न पाइये जोनिए, नानक गुर परमेश्वर पाया, जिस प्रसाद इश पुनिए, सूही महला पंजवा, संतां के कार्ज आप खलोया, हर कम करामन आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम, अमृत जल छाया पूर्ण साध कराया, सगल मनोरथ पूरे, जय जयकार पया जग अंतर, लाते सगल वसूरे, पूर्ण पुरख अच्युत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम त्याया, नव निध सिद्ध रिद दीने करते, टोट न आवे काई राम, खात खर्चित बिलशित सुख पाया, करते की दात सुवाई राम, दात सुवाई निखुट न जाई, अंतर जामी पाया, कोट बिगल सगले उठ नाठे, दुख न नेड़े आया, सांत सहज आनंद कनेरे, बिरसी पूख सबाई, नानक गुण गावे स्वामी के, अचर जिस वडियाई राम, जिसका कार्य तिन ही किया, मांस क्या वे चारा राम, भगत सोहन हर के गुण गावे, सदा करे जयकारा राम, गुण गाए गोविंद अनद उपजे, साध संगत संग बनी, जिन उदम किया ताल केरा, तिसकी उपमा क्या गनी, आठसर तीर्थ पुन किरिया, महानिर्मल चारा, पतत पावन बिरद स्वामी, नानक शब्द अधारा, गुण निधान मेरा प्रभु करता,

बिनवंत नानक इश पुन्नी एख दर्शन जीजे राग सूही महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हों सम्मल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान औगुण को ना चितारे पतत पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने काले काड़ काड़ वासी सर्ब निवासी नेरे गीते नेरा नानक दास सदा शरणागत।

सच रते से निर्मले होमे तज विकारा, जिस तू मिले सो तुद मिले सो ईस त्यारा। श्लोक महला तीजा, सूविगे सूहा सब संसार है, जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ सा बिरस जाए। ज्यो टेके ना बिरख की छाओ, गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सगत सिवे कर आई, मन वसया हर अमृत नाओ। नानक बरिहारी गुर अपने, जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा, सूहा रंग विकार है तंतन पाया जाए। इस लेंदे बिलम न हो वई, रंड बैठी दूजे पाए। मुंद एयानी दुमनी सूहे वेस लुभाए। शब्द सच्चे रंग लाल कर, पाए पाए सीगार बनाए। नानक सदा सुहागणी, जे चलन सतगुर पाए पौड़ी। आपे आप उपायन आप कीमत पाई, सीधा अंत न जापई गुर शब्द बुझाई। माया मोह गुबार है,

पाई, अचिंत नाम बसया मन आई, होमे माया शब्द जलाई, दर सच गुरते शोभा पाई, जगदीश से वो मैं अवर ना काजा, अन दिन अंध होवे मन मेरा, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ, मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को समसर वेख, बौड़ ना मरे ना जम पिख, करगी मैं सब कोट निधान, सदगुर दिखाए गया अभिमान, सदगी लागा सहज ध्यान, अनदिन गावे एको नाम, इस जुग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जय देखा तै रहा समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का शब्द अत मीठा लाया, नानक तृष्ण बुझी मन तन सुख पाया।

नरहरा जानी ऊपर कृपा प्रवतारी मिल सदगुर पार परा रहाओ हमरे पिता ठाकुर प्रास्वामी हर दियो मत्ती जस करा तुमरे संग लगे से उधरे जो संग कास्त लो तरा साक्त नर होशी मत मध्यम जिन हर घर सेव न करा ते नर पाघीन दोचारी वे जन्म मोए फिर मरा जिन कौ तुम घर मिलो स्वामी ते नाए संतो गुरसरा दुर्मत मैल गई।

बात होवै नहीं। अपना पला सब कोई बांछ, सो करे जे मेरे चित ना चितैनी। मन की मत त्यागो हरजन, एहा पात कठैनी। आन दिन हर हर नाम त्यावो, गुर सतगुर की मत लैनी। मत सुमत तेरे वस स्वामी, हम जंत तू पुरख जनतैनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी, जो पावे ते वे बोलैनी।

संगत कह अंत लाभो, क्यों तरिये बिखिया संसार, तद गुरबोहित पावे पार रहाओ। पामन चुल्हारे माया दे, हर के भगत सदा थिर से, हरख सोगत रह निरारा, शेरी ऊपर आद गुरु रखवारा, पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा।

को पाया, हर का मंदिर तस्मय लाल, गुर खोलिया पड़दा देख पई निहाल, जिन त्याकै तस आया साध, ज्यों गूंगा मन में बिस्मात, आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया, बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव, बिघन न लागे जप अलख तेव, धरत पुनीत पई गुण गाए, दुरत गया हर नाम त्याए रखाओ, सबनी ताई रविया आप, आज जुगा जा कावड़ प्रताप, गुर प्रसाद न होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सदगुर तूठे, पार ब्रह्म प्रापय रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले, नानक दास

मोहे अनाथ तुमरी शरणाई, कर कृपा कर चरण तिहाई। दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़लाए रघाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जा पीड़। सर्ब दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मन तन आधार, विस्तृत नाम होवत तन सार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज,

ओंकार सतगुर प्रसाद मृत मंडल जग साजे जो बालू कर बार बिनसत बार ना लग गई जो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मने माहे सद देख विचार सिद्ध साधक गिर ही जोगी ताज गए कार बार रखाओ। जैसा सुबना रैन का तैसा संसार दृढ़ मानसा बिनसी है क्या लगे ग्वार। कहां सो पाई मीत है देख नैन पसार एक चाले एक चाल सै सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेवया से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख पैज मुरार। बिलावल महला पंजवा लोकन किया वडियाईया बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जी उदाल होए तो भगती लागो। लपट रहो मन बसना गुर मिल ए त्याग हो रगाओ करो बेनती अत कनी यो जियो हो मागो। अर्थ आनसा वारिया प्रे निमख सुहागो पंच संग गुरते छुटे दोह अर रागो हृदय प्रगास प्रगट पया निसबासर जागो। सारण सुहागण आया जिस मस्तक भागो कहो नानक तिन पाया मन तन सीत लागो।

अब प्रभु सब करे कराया, पद पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया। मद कूलो मानुख जान माया परमाया, नानक तिस पत राखसी जो प्रप है राया। बिलावल मोहल्ला पंजवा माटी तेजन साजया, कर दुर्लभ देखे अनक शिदर मन में टके निर्मल दृष्टि हे। क्यों बिस्तरे प्रा मने ते जिसके गुण एहे, प्राप तज रचे जे आन स्यो सो रलिगे खे हे रघाओ। सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करे हे, छोड़ प्रपंच प्रसुमरचो तज कूड़े नेहे। जिन अनक एक बहु रंग किए है होसी एहे, कर सेवा तस पार ब्रह्म गुरते मत लेहे। ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरनेहे, दास दास को दासरा नानक कर लेहे। बिलावल मोहल्ला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अन आस, सब ऊपर सुमरथ प्रभ पूर्ण गुणतास। जनका नाम आधार है प्रसरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रखाओ। आप रखे आप देवसी आपे प्रतपारे, दीन दयाल कृपा निधे सास सास संहारे। करणहार जो कर रहा साई वड्याई, गुर पूरे उपदेसया सुख खसम रजाई। चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुकुम पछाता, न मिलसे न छोड़ जाए।

भगत आराध्य एक रंग गोविंद गोपाल, राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार, शरण परे प्रभु तेरिया प्रभु की वडियाई, नानक अंत ना पाईए बेअंत गुसाई। बिलावल मोहल्ला पंजवा, सिमर सिमर पूर्ण प्रभु कार्ज पैरास, करतारपुर करता वसै संतन कै पास रखाओ, बिघन न को लागता गुर पै अरदास, रखवाला गोविंद राय भगतन की रास, तोट न आवे कदे मूल पूर्ण पंडार, चरण कवन मन तन बसे प्रभ पगम अपार, बस्त कमावत सब सुखी इस ऊन ना दिस, संत प्रसाद पेटे प्रभु पूर्ण जगदीश, जय जयकार सभे करे सजथान सोहय, जप नानक नाम निदान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल मोहल्ला पंजवा, हर हर हर आराधिये होइए आरोग, रामचंद की लिस्ट का जिन मारिया रोग, रघाव गुर पूरा हर जापिए नित कीचे भोग, साध संगत कैवारणे मिलया संयोग, जे सिमरत सुख पाईए बिन से बियोग, नानक प्रभु शरणागति करण कारण योग। राग बिलावल महला पंजवा, दो पदे कर पंजवा एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद अवर उपास सत्या।

को नास, चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुण तास। कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग कड़ सास रहाओ। मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास, नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। बिलावल मोहल्ला पंजवा सर्ब सिद्ध हर।

प्रमिट गया रविया नित राम, साध जना के संग बस्त तुग सहज विश्राम, साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रखाओ, पलट पए संसार में फिरते पए नाम, नांग ते शरणागति काट कर सब जान, बिलावल मोहल्ला पंजवा रोग मिटाया आव प्रभ, उपजया सुख सांत वड प्रताप अजज रूप, हर कीनी दात गुर गोविंद कृपा करी, रखिया मेरा भाई हम।

उत्तम करो सोई पल हमरे, पेख नानक सुख चरणारे, बलाबल मोहल्ला पंजवा। सुनियत प्रातो सगल उदाहरण, मोह मगन पत संग प्राणी ऐसे मने बसारन रखाओ। सांच विखिया ले ग्रह जकीनी,

कहो नानक ऊचो ऊचा बलावल महला पंजवा बिन हर कामना आव कहे जा सो राच माज तुम लागे मोह मोहनी मोहावत हे रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिने मह जावत हे उर जरे इंद्री रस प्रेरे हो बिखे ठगोरी कावत हे तिरण को मंदर साज सवार हो पावक तले जरावत हे ऐसे गढ़ में ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत हे पंच दूत मोड पर ठाडे केस गए फेरावत हे दिटन आवे अंध अज्ञानी सोए रहो मद मावत हे जाल पसार चोग बिस्तारी पंखी जूफा हावत हे कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत हे बिलावल महला पंजवा हार घर नाम अपार अमोली प्राण प्यारो मने अधारो चीत चितवो जैसे पान तंबोली रखाओ सहज समायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेम मुख लागो जोवड़ पागो सुहाग हमारो कतो ना डोली रूप ना तूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मोली

ऊपर पावे, पेखत सुनत सदा संघरे रहाओ। काज भ्याजन कंचन छाडन, बैरी संघ हेत साजन त्याग करे। होमन तौरा अनहोमन मीठा, दिखिया मैं लपटाए जरे। अंध कूप मैं परे हो प्राणी, परम गुबार मुँह बंद परे। कहो नानक प्रभुत दयारा, गुर पीटे काढ़े वहां भरे। बिलावल महला पंजवा, मन तरसना हर चीना, पै आनंदा मिटे अंदेसे।

चरण गहे आमण जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किलवख दहे निरपो होए पजो जगदीश इो पदार्थ वड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवां सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रखाओ काट कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु न रहो तो छोड़ गया सा पाई साक कहो नानक तिस प्रभ लिहारी जिन जनका कीनो पूर्ण वाक बलावल मोहला पनवा पूरे गुर की पूरी सेव

बनायो आप अपने सेवक की आपे रख ब्रह्म मेरे को वड प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर वस कीने जिन सगले जंत चरण कमल नानक शरणाई आराम नाम जप निर्मल मंत।

हस प्रदीने जगत उधारन नावखण परताप दुग बिन से सुख अंध प्रवेशा त्रिशन बुझी मन तन सज तराप अनाथ को नाथ शरण समर्थ सगल सहित को माई बाप भगत वछल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक आलाप बिलावल मोहल्ला पनवा जिस ते उपजिया तिसे पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम होए कल्याण रखाओ गुरपूरा पेट्यू बड़ भागी अंतर जामी सुड़ सुजान हाथ दे राखे कर अपने बड़ समरत निमाणिया को मान प्रम पै बिनस गए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास आराध्य नानक सदा सदा जाएगे कुर्बान बिलावल महला पंजवा दोवे थाब रखे गुरसूरे थलत पलत पार ब्रह्म सुवारे कार्ज होए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु तूरे आमन जान रहे थिद पाई जन्म मरण के मिटे बसूरे प्रम पै तरे छुट्टे पै जम के कट कट एक रहा पर पूरे नानक सरण परे दुख पंजन अंतर बार पेख हजूरे बिलावल महला पंजवा दर्शन देखत दोख नसे

क्या गुण तेरे सार संहारी, सास सास प्रभु तुम्हें चितारी, कृपा निध प्रभु दीन दयाला, जी जंत की करो प्रतपाला, आठ पैर तेरा नाम जन जापे, नानक प्रीत लाई प्रभु आपे, बिलावल मोहल्ला पंजवां, तन तन जोबन चलत गया, आराम नाम का भजन न कीनो, करत विकार निस्पोर भया रहाओ, अंग प्रकार भोजन नित खाते, मुगदंता कस खीन खया, मेरी मेरी कर कर मूठो, पाप करत ने परी दया, महा विकार कोर दुख सागर, जिसमें प्राणी गलत पया, शरण परे नानक स्वामी की, बहां पगर प्रव काड लया, बेलाबिल मोहल्ला पंजवां।

मूल लाल नस्यो प्रीत बनी अरहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माहे बस्त है तू कर कृपा प्रवे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर कहो आकथ कथा जाकी बात सुनी जन नानक दासन दास कहित है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी बिलावल महला पंजवा हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदे तर मन ध्यान रखाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका किया सगल जहान रसना रवो एक नारायण ताती दरगे पावो मान साधु संग प्राप्त जाको तिन्ही पाया इहो निधान गावो गुण कीर्तन नित स्वामी कर कृपा नानक दीजे दान बिलावल महला पंजवा राख लिगे सतगुर की शरण जय जय कार हो आज अंतर पार ब्रह्म तेरो तारण तरण रखाओ विश्वम पर पूर्ण सुखदत्त सगल समग्री पोखण परण थान सनंतर सर्व नरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आद जुगाद तब रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरण।

जो जो कीनो सो तुम जानेओ, पेख्यो ठौर नाही कछ तीठ मुकरण, बड़ प्रताप सुनो प्रभु तुमरो, ओड़ अगा तेरो नाम हरण।

दूत धुट सब होए खया। गुण अवगुण प्रकश ना बिचारियो, कर कृपा अपना कर लया। अतुल बड़ाई अचुत अबनासी, नान कुचरे घर की जया। बिलावल मोहल्ला पनवा, बिन पय भगती तरन कैसे। करो अनुग्रह पथ उदाहरण, राग स्वामी आप परोसे रघाव। सिमर नहीं आवत फिरत मदमावत, दिखया राता स्वान जैसे। औद विहावत अदक मुहावत, पाप कुमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख नरंजन, साधु संग तरमण जैसे। केशव कलेश नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे।

आपे मेल लए, जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। तज अवमान अरचिंत बैरानी साधे शरण पए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तांते रोग खय। महामुख अजान अज्ञानी रखे थार दए, कहो नानक गुरपुरा फिट्यो आमन जान रहे। बिलावल मोहल्ला पंजवां, जीवो नाम सुनी जो सो प्रसन्न पए गुरपुरे, ता मेरी आस पुन्नी रखाओ। पीर गई बंदी मन तीरा मुयो अंध तुनी, उबजो चाओ मिलन प्रा प्रीतम रहन ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारे तिमरे अनक मुनि, अंध ले टेक नेर थन थन पायो। प्रभ नानक अनक गुणी राग बिलावल, महला पंजवां कर तेरवां पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मोहन नींद न आवे हावे, हार कजर बस्तर अवरन कीने ओडीनी ओडीनी ओडीनी कब कर आवे री रखाओ। सरण सुहागन चरण शीश धार।

गने ना जाहे, हर बिना कते समाहे, गए ओट चितवी नाथ, नानका दे रख हाथ, हर गुण दे गोपाल, सर्व कड़ प्रतपाल, मन प्री दर्शन प्यास, गोविंद पूर्ण आस, एक निमख रहन ना जाए, वड़भाग नानक पाए, प्रभ तुझ बिना नहीं होर, मन प्रीत चंद चकोर, जो मीन जल सुवेत, आल कमल पिन ना पेत, जो चकवी सूरज आस, नानक चरण प्यास, जो तरन परत परान, जो लोभिये तन दान, जो दूध जले संजोग, जो मां खुदिया रस भोग, जो माद पूते हेत, हर सिमर नानक नेत, जो दीप पतन पतंग, जो चोर हिरत निसंग, मैगल कामे बंद, जो ग्रस्त बखई तंद, जो जुआर बिसन ना जाए, हर नानक इहो मन लाए, कुरंक न देने हो, चात्रक चाहत में हो, जन जीवना सत्संग, गोविंद भजना रंग, रसना बखाने नाम, नानक दर्शन दान, गुण गाए सुन लिख दे, तो सर्व फल हर ले, उल समूह करत उधार, संसार उतरस पार, हर चरण भोजित ताहे, मिल साध संग जस गाहे, हर पैज रखे मुरार, हर नानक सरण

जिस लहे मिलाई, शुक्रवार प्रवरया समाई, आप उपाय सब कीमत पाई, गुरमुख होवे सो करे विचार, सच संजम करनी है कार, वर्तनेम निता प्रतूजा, बिन बूझे सब पाओ है दूजा, छिन शरवार सौन सात विचार, होमे मेरा परमे संसार, मनमुख अंधा दूजे पाए, जम दरबादा चोटा खाए, गुरप्रसादी सदा सुख पाए, सतकरणी साच लिवलाए, सतगुर सेवे से बड़फागी, होमे मार सच लिवलागी, तेरे रंगराते सहज सुपाए, तू सुखदाता लहे मिलाए, एक से दूजा नाही कोय, गुर

अपने सहना ली राम ना अपने संग दासी मैं भगत हर की पावे आगाध बोध अकथ कथिए सहज प्रभ गुण गावे राम नाम करसाल रसिया रवे सज प्यारिया गुर शब्द दिया दान किया नानका विचारिया श्री धर्म होयड़ी फिर संगसूती राम गुर के पाए चलो साज संगूती राम तन साज संगूती हर संगसूती संग सखी सहेलिया एक पाए एक मन नाम वसया सतगुरु हम मिलिया दिन रैन कड़ी न चसा विसर सास सास निरंजनो शब्द जोत जगाए दीपक नानका पहो पंजनो जोत सवाड़िए तिर पवन सारे राम काड़ कड़रा भरया अलख अपारे राम अलख अपार अपार साचा आप मार मिलाइए पौमे ममता लोब जल हो शब्द मैल चुकाइए दरजाए दर्शन करी पहाने तारे तारन हारिया हर नाम अमृत चाग तृप्ति नानका उरतारिया बिलावल मुहला पहला मैं मन चाओ कणा साज विगासी राम मोगी प्रेम परे प्रपनासी राम अवगत हर नाथ नाथ है इसे पावे सोथी है कृपाल सदा दयाल दाता जिया अंदर तू जीए मैं अवर ज्ञान ना ध्यान पूजा हर नाम अंतरवस रहे पेख पवनी हठ ना जाना नानका सज गहे रहे बिनड़ी रहन भली दिन सुहाए राम निकर सूतड़िए पिरम जगाए राम नभान नभतन शब्द जागी अपने पिर पानिया तज कूड़ कपट सुभाओ दूजा चाकरी लोकानिया मैं नाम हर का हार कंठे साच शब्द निशानिया कर जोड़ नानक साच मांगे नदर कर तुफानिया जाग सलोनड़िए बोले गुरबाणी राम जिन सुन मन अड़ी अकथ कहानी राम अकथ कहानी पद निर्वाणी ओ विरला गुरमुख बूझे ओ सद सुमाए आप गवाए तिर पवन सोजी सूझे रहे अतीत अपरंपराता साच मन गुण सारिया ओ पूरे या सरबठाई नानका उरतारिया महल बुलाएड़ीगे भगत स्नेही राम गुरमत मन रहसी सीज सदेही राम मां मार रीजे शब्द सीजे त्रैलोक नाथ पछाणे मन डीग डोल ना जाए कत ही अपना फिर जाने मैं आधार तेरा तू खसम मेरा मैं तान तकिया तेरा साच सूचा सदा नानक गुर शब्द चगर नबेरो।

लाडले लाड लड़ाए सब में मिरहमारी होए गते कीत चितवो मिट अंधारे जो आस चकवी दिन चरे नांग पैम पै प्रसंग मेली मछली नीर ना विसरे तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा तुही बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अंध मंगल रस खणा नवल नवतन नाह उबाला कम रसना गुण फना मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुख हर नानक पयम पै मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा बिलावल मोहल्ला पंजवा शांत मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक सुंदर सांत दयाल प्रभ सर्व सुखानंद पियो सुख सागर प्रापेटे नानक सुखी हो त्यो जियो शांत सुख सागर प्रापाई है जब हो वे भागो राम मानन मान मई है आरे चरणी लागो राम दौड़ श्याम चातरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम नानक पो शरणाई राम राय फिर होए सुहागो राम तो प्रभ तज कद लागी है जिस बिन मर जाय गए राम लाज न आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाई गए राम पत पावन प्रभ त्याग करे तो कत ठहराई गए राम नानक भगत पाओ कर दयाल की जीवन पद पाए गए राम श्री गोपाल ना उच्चर है बल गई है दो चार नरसना राम प्रभ भगत वशल ने सेव ही ताया काक ग्रसना राम प्रमो ही दुख ना जान ही उड़ जो नहीं बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना बिस्ता क्रिम पसना राम लाए बिरो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा होमे बिख त्यागन राम ईत ऊत न डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जे प्रपाया अपना अटल सुहागन राम बिलावल महला पंजवां हर खो जोवड़ पागियो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद सदगाविये पार ब्रह्म के रंगे राम तो प्रसद ही सेविये पाइगे फल मंगे राम नान प्रसरणागति जब अंत तरंगे राम एक तल प्रभु ना विसरै जिन सब कुछ दीना राम वड़पागी मेलावड़ा गुरु पिर चीना राम बहा पगड़ तम ते काढ़िया कर अपना लीना राम नाम जबत नानक जीवे शीतल मन सीना।

धन मनी ताकि कछु न का नीरे राजा प्रजा सम कर मार ऐसो काल बड़ा नीरे हर के सेवक जो हर पाए इनकी कथा निरारी रे आवे ना जाए ना कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया एह तजो जी जानी रे कैद कबीर सुहो रे संतो मिल गए साग पानी रे बिलावल विद्या ना परो बाद नहीं जानो हर गुण कथत सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक सयानी मैं बौरा मैं बिगड़ो बिगड़े मत औरा रहाओ आप ना बौरा राम की ओ बौरा सदगुरु जार गयो परम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत खोई मेरे परम फूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ता एक कह जाने अभे ना माता तो कहो ना माता कहे कबीर रामे रंग राता बिलावल ग्रेव तज बानखण जाइए क्यों खाइए कंदा अजो विकार ना छोड़ई पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो भजल निध पारी।

लूट लेहे सागत पद खोवे साध जना पग मल मलत होवे पांच पूत जने एक माए ओत बुझ खेल कर जगत विहाए तीन गुणा के संग रच रसे इनको छोड़

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गही गोंड मोहल्ला पंजवां जा को राखे रखनहार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जोह काम

राम रतन पसे मन आए, सफल जन्म ताका परवान, पार ब्रह्म निट कर जान। पाए भगत प्रभु कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच वापार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर। राग गोंड अष्टपदियां, महला पंजवां कर दूजा, एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, कर नमस्कार पूरे गुरुदेव, सबल मूर्त

संत जपे गुर दियो भगवंत, संगत के मुख उज्जल पए, सगल थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाहे।

खुदे जाहे वाके अंतर नहीं संतोख बिन सुहागन लागे दोख तन सुहागन महा पवीत तपे तपीसर डोले चीत रहाओ सुहागन किरपन की पूती सेवक ताज जगत स्यों सूती साधु कै ठांडी दरबार तरन तेरी मोको निस्तार सुहागन है अत सुंदरी पग नेवर शनक शन हरी जाओ लग प्राण तऊ लग संगे नहे तचली बेग उठ नंगे सुहागन पवन त्रै लिया दस अठ पुराण तीर्थ रस किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वेदे बड़े पूबत राजे हैं सिद्धे सुहागन

उत्तर है, कुंभ बिना जल ना टीकावे, साधु बिन ऐसे अवगत जावे, जारो तिसे जो राम न चेत, तान मन रमत रहे मैं।

अघात बतावे, गुरमुख सा सही प्रापाए, कर कृपा आप मिलावे, राम मोको हर जन मेल मन पावे, अम्यो अम्यो हर सह मीठा, मिल संत जना मुख पावे रखाओ, हर के लोग राम जन उत्तम, मिल उत्तम पदवी पावे, हम होत तेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे, सेव जन सेवे से बड़ पागी, जिद मंतन प्रीत लगावे, बिन प्रीति करे बो बाता, कूड़ बोल कूड़ो फल पावे, मोको तार कृपा जग जीवन दाते, हर संत पगी ले पावे, औ काटो काड़ बाढ़ सिर राखो, जित नानक संत चढ़ आवे, राम कली मल्ला चौथा, जीवड़ पा हुए वड़ मेरे, जन मिलदिया टिल न लाइये, हर दिन अमृत कुण सर नीके, वड़ फागी तित ना भाइये, राम मोको हर जन कारे लागे, हो पानी पखा पीसो संत आगे, पाग मल मल तूर मुख लाई गये रखाओ, हर दिन वड़े वड़े वड़ ऊचे, जो सदगुर मेल मिलाई गये, सदगुर जेवड़ अबर न कोई, मिल सदगुर पुरख तिहाई गये, सदगुर शरण परे तिन पाया, मेरे ठाकुर लाज रखाई गये, एक अपने स्वाए आए बह गुर आगे, जो बगल समाध लगाई गये, बगला काग नीच की संगत, जाए करंग बिखु मुख लाई गये, नानक मेल मेल प्रसंगत, मिल संगत हंस कराइये, राम कली महला चौथा, सदगुर दया करो हर मेलो, मेरे प्रीतम प्राण हर राया, हम चेरी होए लगे गुर चरणी, जिन हर प्रा मार्ग पंथ दिखाया, राम मैं हर हर नाम मन पाया, मैं हर बिन अवर न कोई बेली, मेरा पिता माता हर सिखाया रखाओ, मेरे एकिन प्राण न रहे बिन प्रीतम, बिन देखे मरे मेरी माया, तन तन वड़ भाग गुर सरणी आए, हर गोबिंद दर्शन पाया, मैं अवर न कोई सूझे बूझे, मन हार जब जपूज पाया, नाम हीन तेरे से नगटे, तिन कस कस नक वढाया, मोको जग जीव जी वाल लै स्वामी, बिन अंतर नाम साया, नानक गुरु गुरु है पूरा, मेरे सतगुरु नाम त्याया, राम कली महला चौथा, सदगुर दाता वड्डा वड़ पुरख है, जित मिले हर उर तारे, जी दान गुर पूरे दिया, हर अमृत नाम सुमारे, राम गुर हर हर नाम कंठ तारे, गुरम कथा सुनी मन पाई, तन तन वड़ पाग हमारे रखाओ, कोट कोट ते तीस त्यावे, ताका अंत न पावे पारे, हृदय काम कामनी मांगे, हृदय मांगे हाथ पसारे, हर जस जप जप वड़ा वडेरा, गुरमुख रखो उरतारे, जे वड़पा होवे ता जपिए, हर पौजल पार उतारे, हर जन निकट निट हर जन है, हर राखे कंठ जन तारे, नानक पिता माता है हर प्रभ, हम बारक हर प्रतपारे, राग राम कली

तुम मैं मान कलाला, तुम देव उत्ते संक न मान हो, हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देवो खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूरे है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहया, नानक कहन न जाए, राम कली महला पनवा, कर कर ताल पखाव ज नयन हो, माथे वजे रबाबा, करनो मद बासरी बाजे, जेवा तुन आगाजा, नृत करे कर मनु

आखार मंडली तरण सुबाई ऊपर गगन चंदोआ पनम चूला करत अकेला जल ते उपत हुआ पंच तत कर पुत्रा कीना किरत मिलावा हुआ चंद सूरज दु जरे चिरागा चौ कुंड पीतर राखे दस पातो पंच संगीता एक पीतर साते पिन पिन हुए पाद दिखावे सभो निरारी पाखे हर कर नृत होवे दिन राती हर कड़ वाजे तूरा एक नचावे एक पवावे एक आए जाए हुए तूरा कहो नानक

अगली किस खबर न पाई, रोवन हार पे ऊट सधाई, परम हो के बांधे बंद, सुबन पया पगलाए अंध, यो तो रजन रचिया करतार, आवत जावत हुगम अपार, न को मुआ न मरने योग, न बिन से अबनासी होग, जो यो जानो तो यो नाहे, जान नगारे को बल जाओ, कहो नानक गुर परम चुकाया, ना कोई मरे न आवे जाया। राम करी मोहल्ला पंजवा, जब गोविंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीव है, फिर ना खाई महाकाल रखाव, और जन्म प्रम प्रम प्रम आयो, बड़े पाग सा संग पायो, बिन गुर पूरे नहीं उधार, बाबा नानक आखे यो

गर्भ परया जप नाथ दिन रहनाई तेरी खिंता दो दिहाई रहाओ गहरी बिपूतला बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा ताई मांगे टूका तृप्त न पावे नाद छोड़ जाचे लाज न आवे क्याल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा गुर गुर कीते बूझ न पाई फिर जोगी आवे जाई जिसन हुआ नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला नामे खिंता नामे बस्तर जन नानक जोगी हुआ अस्थिर क्यों जप्या नाथ दिन रहनाई हुन पाया गुर गोसाई रहाओ दूजा राम कली महला पनवा करन करा मनसोई आन ना दिसे कोई ठाकुर मेरा सूढ़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे घर समीठा गुरमुख किने विरले डीठा रहाओ निर्मल जोत अमृत नाम पीत अमर पय ने काम तन मन शीतल अग्नि निवारी अंधरू प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब कुछ तेरा सब बलिहार जाओ लख बेरा तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया कहो नानक सब पड़दा टूटा हौ तेरा तू मैं मन मूठा राम करी महला पंजवा सेवक लायो अपनी सेव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप निवारी जिस गुर कहो सद बलिहारी ताज मारे पूरे सदगुर।

तेराय तू नरभोर न जो नी पाए जाके अंतर पलटू आप ताको नाही दुख संताप ला रतन से पाले परया फिर कुटम ओजन ले तरया ना जो परम ना दुबदा दूजा एको एक नरंजन पूजा जल का देखो आप दयाल कहो नानक प्रा मिले रसाल राम कली महला पनवा कंते छुटकी अपनी तारी प्रभ की आज्ञा लगी प्यारी जो कुछ करे सो मन मेरे मीठा ता यो अजद नयन डीठा हम वे जानी रे मेरी गई बलाए बुझगी किस निवारी ममता गुर पूरे लियो समझाए रखाओ कर कृपा राख्यो गुर सरना गुर पकराए हर के चरना बीस बिसवे जामन ठहराने गुर पार ब्रह्म एक ही जाने जो जो किन्नो हम तिसके दास प्रा मेरे को सगल निवास ना को दूत नहीं बैराई गल मिल चाले एक पाई जा को

चलना, राच रहो तू संग सुपना रखाओ, बाल व्यवस्था बारक अंध, पर जोबन लागा दुर्गंध, त्रिति व्यवस्था संचे माए, बिरध पया छोड़ चलो पछताए, किरण काल पाई दुर्लभ देहे, नाम बिहूनी होई खेहे, पशु प्रेत मुग्ध ते बुरी, तिसे ना बूझे जेन ए श्री, सुन करतार गोविंद गोपाल, दीन दयाल सदा कृपाल, तुम्हें छुड़ावो छुटके बंद, बक्स मिलावो

अंत की बार ऊठ सिधारे, ना बिनासव चूड़ परानी, गोविंद भजन बिन अवर संगराते, तेसा माया मूठ परानी रहाओ। तीर्थ नाये न उतर समायल, कर्म धर्म सब हो में फैल, लोक बिचारे गत नहीं होए, ना बिहूने चल सहे रोए, बिन हर नाम ना टूटस पटल, सो दे शास्त्र सिमरत सगल, सो नाम जपे आप जपाए, सगल फला से सुख समाए, राखन हारे रख हो आप, सगल सुखा प्र तुम रे हाथ, जित लाभ तित लागे स्वामी, नानक साहेब अंतर जामी, राम कली महला पंजवा, जो कुछ करे तो ही सुख जाना, मन असमझ साह संगपति आना, डोलन ते चूका ठहराया, सत महे ले सत समाया, दू गया सब रोग गया, प्रभु की आज्ञा मन में मानी, महापुरख का संग पया रहाओ। सगल पवित्र सर्व निर्मला, जो वरताए सोई पला, जय राखे सोई मुक्त स्थान, जो जपाए सोई नाम, अड़सठ तीर्थ जय साध पग तर है, तह बैकुंठ जय नाम उच्चर है, सर्व आनंद जब दर्शन पाईये, राम गुणा नित नित घर गायगे, आपे करकड़ रहया बेआप, दयाल पुरख प्रगट प्रताप, कपट खुराने राम नाठे दूरे, नानक गौगुर पेटे पूरे, राम कली महला पंजवा, कोट जापता विश्राम, रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान, अनक रूप रंग भोग रस, गुरमुख नाम निमख हृदय बस, हर के नाम की वड्याई, कीमत कहन न जाई रखाव, तूर वीर तीर्ज मद पूरा, तेज समाद तुन गैर गभीरा, सदा मुक्त ताके पूरे काम, जा कर दिवसे हर नाम, सगल सुख आनंद अरोग, समदर्शी पूर्ण निर्जोग, आए न जाए डोले कतनाही, जा के नाम बसे मन माही, दीन दयाल गोपाल गोविंद, गुरमुख जपिए उतरे।

आन संतोष आया मन पूरा पाए फिर मांगन काहे जाए हर की कथा सुनत पवित जेवा भगत पाई गत मत तो प्रवान जिस हृदय वसाई नांग तेजन उत्तम पाई राम कली महला पंजवा गौ कर पकरी न आई हाथ प्रीत करी चाली नहीं साथ कहो नानक जो त्याग दई तब ओ चरणी आए पई तुन संतो निर्मल विचार आराम ना बिन गत नहीं काई गुर पूरा भेटत उधार रखाव जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान जब उसको कोई मन पर हरे तब ओ सेवक सेवा करे मुख बिरावे अंत ठगावे एकत ठौर ओ कई ना समावे उन मोहे बहुते ब्रह्मांड राम जनी किन्नी खंड खंड जो मांगे सो भूखा रहे इस संग राचे सो कछु ना लहे इसे त्याग सत्संगत करे वडभागी नानक ओ तरे राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्वमय पेख पूर्ण पूर आपा पेख रतन अमोल हृदय मैं जान अपनी वस्तु तू आप पछाण पी अमृत संतन प्रसाद वड़े भाग होवे तो पाईए बिन जेवा क्या जाने स्वाद रहाओ आठ दस बेद सुने कह डोरा कोड़ प्रगास न दिसत अंधेरा पशु प्रीत काह संग्रह।

सागर तरयो बाशर खोज खेद न पायो नए पुनरोज सिंध समायो कट के माघे करण हार कहो किस अज जनाघे जो छूटो तो जाए पयाल जो कढ़ो तो नजर निहाल पाप पुन हमरे वसनाहे रसक रसक नानक गुण गाहे राम कली मोहल्ला पंजवा ना तन तेरा ना मन तोहे माया मोहे बेअप्या तोहे उदम करे गाडर ज्यो शेल अचिंत जाल काल चक्कर पेल हर चरण कमल सरनाए मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावे साज तना रहाओ ऊने काज न होत पूरे काम क्रोध मद सदगी चूरे करे विकार जीरे के ताई गाफल संगनत हुआ जाई तरत तो अनक शल जाने कौडी कौडी को खाग सिर छाने जिन दिया तसे न चेते मूल मिथ्या लोभ न उतरे सूल पार ब्रह्म जब पए दयाल जो मन हुआ साधरवाल हस्त कमल लड़ली नू लाए नानक साचे सा समाए राम कली मोहल्ला पंजवा राजा राम की शरणाए निरपो पए गोविंद गुण गाव साध संग दुख जाए रघाव जाके राम बसे मन माही तुजन दुत्र पेखत नाही सगले काश वारे अपने हर हर नाम रसनित जपने जिसके मस्तक हाल गुर तरे तो दास अंदेशा काहे करे जन्म मरण की चूकी कान पूरे गुर ऊपर कुर्बान गुर परमेश्वर पेट निहाल तो दर्शन पाए जिस होए दयाल पार ब्रह्म जिक्र पा करे सा संग सो पव जलता रहे अमृत पीवो साध प्यारे मुख उजल साते दरबारे अंध करो ताज सगल विकार नानक हर जप उतरो पार राम कली मोहल्ला पंजवा ईंधन ते बैसंतर भागे माटी को जल दह दिस जागे ऊपर चरण तले आकाश खड़मे सिंध की ओ परगास ऐसा समर्थ हर जीव आप निमकन बिसरे जी भगतन कह आठ पैर मनता को जाप रहाओ प्रथमे माखन पाछे दूध मैलू कीनू सा बनसूद पय ते निरपो डरता फिरे हुंदी कौ अणहुंदी हिरे देही गुप्त बदेही दीसे सगले साज कर जग दीसे ठगन हार अन ठगदा ठगे बिन वखर फेर फिर उठ लागे संसभा बिन करो बखियान सिमरत शास्त्र वेद पुराण ब्रह्म विचार विचारे कोय नानक ताकी परम गद होए राम कली मोहल्ला पंजवा जोत पावे सो थिया सदा सदा हर की शरणाई प्रभ नाही आन बिया रहाओ पुत कलतर लक्ष्मी दिसे इन में किशु न संग लिया दिखे ठकौरी खाए पुलाना माया मंदिर त्याग गया निंदा कर कर बहुत विगूता गर्भ जो मैं कृत पया पूर्व कमाने छोड़े नाही जम दूत ग्रास्यो महा भया बोले झूठ कमावे अवरा तिस न बूझे बहुत हया असाध रोग उपजिया संदूखन दे बिना सी महा खया जिन्हें निवाजे तिन्ही साजे आपे कीने संत जया नानक दास कंठ लाए राखे कर किरपा पार ब्रह्मया राम कली मोहल्ला पंजवा ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई जाका सिमरन तिरथा ना जाई रहाओ दर्शन पेखत होए निहाल।

अनाथ को नाथ, पतत उदाहरण कृपा निधान, सदा सदा जयगे कुर्बान, निर्मल मंत दे जिस दान, तजे विकार बिन से अपमान, एक तिहाई के साथ के संग, पाप विनाशे नाम कै रंग, गुर परमेश्वर सगल निवास, कट कट रब रहा गुणतास, दर्श दे तारो प्रव्यास, नित नानक चितवे सच अरदास।

एक मैं सर्व सर्व मैं एका ए सब गुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा तो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया तिर पवन जो दिखाई सत्य तख्त सत महली बैठे निरपो ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी काड़ काड़ किंगरी वाई नानक शरण प्रभु की छूटे सतगुर सच सुखाई राम कली मखला पहला औ हठ हस मड़ी करशाया तारण गगन कल तारी गुरम केती शब्द उधारी संतो रखाओ ममता मार ओ में सुख तिर पवन जो तुम्हारी मनसा मार मने मैं राखे सतगुर शब्द विचारी सिंगी सुरत अनाहद वाजे फड़कड़ जो तुम्हारी पर पांच बेण तई मन राखिया ब्रह्म अग्न परजारी पांच तत् मिल अहरस दीव निर्मल जो त्यपारी रस लौके इव तन किंगुरी वाजे शब्द निरारी शिव नगरी मैं आसन औदू अलख अगम अपारी काया नगरी इव मन राजा पांच वसे विचारी शब्द रवे आसन कर राजा अदल करे गुणकारी काल विकाल कहे कहे बपरे जीव तमुआ मन मारी ब्रह्मा बिशन महेश एक मूर्त आपे करता कारी काया सो तरे पवसागर आत्म तत् विचारी गुर सेवा ते सदा सो पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुणदाता होमे तृष्णा मारी त्रै गुण मेटे चौथे वर्त एहा भगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चीने हृदय एक मोरारी मनवा अस्थिर शब्द राता एहा करणी सारी वेद बादरा पाखंड औदू गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जोग कुमावे औदू जत सत शब्द विचारी शब्द मरे मन मारे औदू जो जुत विचारी माया मोह भवज लख अवधु सब तरह कुल तारी सब सूरज उचारे अवधु बाणी भगत विचारी यो मन माया मोहया अवधु निरसे शब्द विचारी आपे भगसे मेल मिलाए नानक शरण तुम्हारी राम कली महला तीजा अष्टपदिया एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सरमे दिया मुंदरा कन्नी पाए जोगी खिंसा कर तू दया आमन जान विपूत लाए जोगी ता तीन पवन जिन लाया ऐसी किंगरी बजाए जोगी जिद किंगरी अनहद वाजे हर सिमर लिवलाए रहाओ सत संतोख पद कर चोली जोगी अमृत ना पुगत पाई क्या कागर डंडा जोगी सिंगी सुरत बजाई मान दृढ़ कर आसन बैल जोगी

सगल जोन मैं तू सिर तरिया अब तू सीज पावे नी सीजे कारज सबरे मन प्रवत्याई जे ईगा ऊहा एक ओही जद का देखिए तत तत ओही ते सेवत मन आरस करे जिस विसरे एक निमख न सरे हम अपराधी निर्गुनियारे ना के सेवा ना करु मारे गुर बोहे थवड भागी मिलया नानक दास संग पाथर तरिया राम कली मोहल्ला पंजवां ताऊ बिहावे रंग रस रूप ताऊ बिहावे माए बापूत ताऊ बिहावे राज मिलक वापारा संत बिहावे हर नाम आधारा रचना साज बनी सबका एक तनी रहाओ ताऊ बिहावे बेद अरबात ताऊ बिहावे रसना साध ताऊ बिहावे लपट संगनारी।

ताहु रोग सोग परमीजा, ताहु पवन तार जात बेगाए, संत बेगावे कीर्तन गाए, ताऊ बेगावे दिन रैन चाल, ताऊ बेगावे सो पिड़माल, ताऊ बेहावे बाल पढ़ावत, संत बेहावे हर जगावत, ताऊ बेहावे नट नाटक निरते, ताऊ बेहावे जिया ए हिरते, ताऊ बेहावे राज में डरते, संत बेहावे हर्ज करते, ताऊ बेहावे मता मसूरत, ताऊ बेहावे सेवा जरूरत, ताऊ बेहावे सोधत जीवत, संत बेहावे हरस पीवत, जित को लाया तित ही लगाना, ना को मूड नहीं को सियाना, कर कृपा जिस दे वे नाओ, नांग ताके बल बल जाओ, राम कली महला पंजवा, दावा अग्न रहे हर बूट, माद गर्भ संकट ते छूट, जाका नाम सिमरत हो जाए, तैसे संत जना राखे घर राय, ऐसे राखन घर दयाल, जत का देखो तुम प्रतपाल रखाओ, जल पीजो तिखा मिटंत, तन बिसे ग्रे आवत कंत, लोभी का तन प्राण आधार, त्यों हर जन हर घर नाम प्यार, किरसानी जो राखे रखवाला, मात पिता दया जो बाला, प्रीतम देव प्रीतम मिल जाए, त्यों हर जन राखे कंठ लाए, जो अंधले पेगत होए आनंद, गूंगा भगत गावे बोचंद, पिंगल पर्वत परते पार, हर के नाम सगल उदार, ज्यो पावक संग सीत को नास, ऐसे प्राशित संत संग बिनास, ज्यो साबन पापर उजल होत, नाम जबत ता प्रम पखोत, ज्यो चक्री सूरज की आस, ज्यो चात्रक बूंद की प्यास, ज्यो कुरंक नाद कर्ण समाने, त्यो हर नाम हर जनमने सुखाने, तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पैता आए चीत, दया तारी तन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार, तब थान देखे नैन अलोय, जिबन दूजा अवर न कोय, प्रम पे छूटे गुर प्रसाद, नानक पेखेओ सब विस्मात, राम कली महला पंजवा, जी जंत सब पेखिए, प्रसगल तुम्हारी तारना, यो मन हर के नाम पधार न रहाओ, खेन में ताप उतापे कुदरत, तब करते के कारना, ताम क्रोध लोभ चूड़ निंदा, साधु संग बिदारना, नाम जत मन निर्मल होवे, सुखे सुख गुदारना, भगत शरण जो आवे प्राणी, तिस ईहा उहा ना हारना, सुख दूस मन की बिरदा, तुम ही आगे सारना, तू दाता सबना जिया का, अपन की आप पालना, अनकबार और जन ऊपर, नानक वंजे वारना, राम कली महला पंजवा अष्टपदी, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, दर्शन पेड़त पाव सब नासे, हरस्यों दे मलाई, मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई, पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए, अंते हुए सखाई रहाओ, सगल दूर का डेरा पन्ना, संत तूर मुखलाई, पदत पुनीत किए खिन पीतर, अज्ञान अंधेर वन्याई, कारण कारण समरत स्वामी, नांग तिसरनाई, बंधन तोड़ चरण कम दृढ़ाए, एक शब्द लिवलाई, अंध कू बिखिया ते काढ़ियो, साच शब्द बने आई, जन्म मरण का सहसा चूका, बहाड़ कथो ना ताई, नाम रसायन इव मनाराता, अमृत पी तृप्ताई, संत संग मिल कीर्तन गाया, नित लव से आ जाई, पूरे गुर पूरी मत दीनी, हर बिन आन ना पाई, नाम धन पाया वडभागी, नानक नरक न जाई, काल सियाण पुगतना मेरी, पूरे गुरु कमाई, जत स संजम सुच गए सोई, आपे करे कराई, पुत्र कलत्र मां बिखिया मैं, गुर साचे लाए तराई, अपने जीते आप संभाले, आप लिगे लड़लाई, साय धर्म का बेड़ा बंधया, पवजल पार पवाई, बेसुमार बेअंत स्वामी, नानक बल बल जाई, अकाल मूर्त अजोनी संभो, कल अंधकार दीपाई, अंतर जामी जीवन का दाता, देखत तृप्त अगाई, एकंकार निरंजन निरपो, सब जलत रहया सुमाई, भगत दान भगतां को दीना, हर नांक जाते माई, राम कली महला पंजवा श्लोक, सिखो शब्द प्यारे हो, जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, मन तारा ताराम प्यारे, हर प्रेम भगत बन आई संतो, सदगुर खेप निवाही संतो, हर नाम लाहा दास को दिया, सगली त्रिसन उलाही संतो, रहाओ, खोजत खोजत लाल एक पाया,

आठ पैर अपना प्रभ सिमरे, एको नाम त्याए राम, त्याए सो प्रोतरे पवजल रहे आमन जाना, सदा सो कल्याण कीर्तन प्रलगा मीठा पाणा, तब इश पुन्नी आस पूरी मिले सद गुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर नाही दुख बसूरिया। राम कली मोहल्ला पंजवा शांत श्लोक, चरण कमल शरणागति अंत मंगल गुण गाम, नानक प्रभ आराधिये विपत निवारण राम शांत, प्रभ विपत निवारण त्रिवन अवरना कोए जियो, सदा सदा हर सिमर गए जल थल महियल सोए जियो, जल थल महियल पूर रहे एक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सुभागे सर्व गुण जगदीशरे, कर सेव सेवक दिन सरैणी पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रकाश मनतन होए जियो। श्लोक, हर सिमरत मन तन सुही बिनसी दुतिया सोच, नानक टे गोपाल की गोविंद संकट मोच, शंत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो, प्रतपाल अचुत पुरख एक तिसे सो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने सदा आनंदन जागा, जियो पिंड गृहथान तिसका तन जोबन तन माल जियो, ससदा बल जाए नानक सर्व जिया प्रतपाल जियो। श्लोक, तदन उत्तरे हर हरे गुण गोविंद वखियान, नांग पगड़ी टेक एक परमेश्वर रखे निदान, शंत तो स्वामी प्रवरख को अंचलता के लाग जियो, बस साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो, एक ओढ़ कीजे जियो दीजे आस एक तरणी तरे, ता संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरे, जन्म मरण विकार छूटे फिर ना लागे दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूर्ण फिर जाका सोहाग जियो। श्लोक, धर्म अर्थ हर काम ओक मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरे नानक लिखिया माथ, शंत सगल इश मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो, अंध भया वड पागी हो ग्रे प्रगटे प्रभ आए जियो, ग्रे लाल आए पूर्व कुमाए तागि उमा क्या गणा, बेंत पूर्ण सुख सहज दाता कमल रसना गुण पणा, आपे मिलाए गए कंठ।

काटन पय हरण तुसागर हर राय दीन दयाल दुख पंजनो नानक नीत त्याए शांत जस गावोड़ पागी हो कर कृपा भगवंत जियो रुत्ती महा मूर्त कड़ी गुण उचरित सोभावंत जियो गुण रंग राते तन तेजन जिनी एक मन त्याया सफल जन्म पया तिनका जिनी सो प्रापाया ओ निदान ना तुल किरिया हर सर्व पापा हंत जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो श्लोक उदम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सा तुद पावसी नानक नाम आधार संत सरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत तू केते हरियाथिया नानक जप भगवंत संत रुत सरस बसंत महाचेत वैसा सुख महा जियो हर जियो नहो मिलिया मौलिया मंतन सह जियो कर नहो नेचल अंध सखिये चरण कमल पर भोलिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूल्या वड़पाग पाया दुख गवाया पई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक शरण तेरी मिटी जम की त्रास जियो श्लोक सा संत मिन प्रमोई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बांधिया नानक कर्म है लेख जो पाने से मिलिया विछोड़े पिया नानक प्रसरणागति जाकावड़ प्रताप संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी जेठ अखाड़े काम जियो प्रेम शोध दुहागणी दृष्ट न करी राम जियो न दृष्ट आवे मर्त हावे महागर्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया कर पाप जोनी पय पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक कोट तेरी राग पूर्ण काम जियो श्लोक सदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन न जाए मन तन अंतर राव रहे नानक सह सुपाए कर गैली नी साजने जन्म जन्म के मीत चरणे दासी कर लई नानक प्रभित चीत शंत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो तन उन उठे जल तल पूरिया मकरंद जियो प्रापुर रहया सर्वठाई हर नाम नवनित गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी और समूहा सब तरे प्रे रंग जागे नए छिद्र लागे किरपाल साधक सिंध जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो श्लोक आस प्यासी मैं फिरो ता पेखो गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रा मेलन हार बिन मिलबे सांत न उपजे तिल पल रहन न जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए संत रुत सरद अडम्बरो असू कतके हर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत का मिल गए गुण तस जियो बिन कंत प्यारे नह सूग सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती साध बिन जैसे तना ईत पुत दैदस अलोकन मन मिलन की प्यास जियो बिन वंत नानक तार कृपा मिल हो प्रा गुण तस जियो श्लोक जलम जी शीतल पय मन तन उपजी सांत नानक प्रभ पूर्ण मिले दुतिया बिरसी प्रांत सद पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक प्रम पै मिट गए रमण राम पर पूर शंत रुत सिसियर शीतल हर पलटे मंगर पोहे जियो जल बुझी दस पाया मिसे माया त्रो जियो अवका पूरे मेर हजूर हर चरण सेवक सेवया हार डोर सीगार सब रस गुण गाव अलख पेवया पाओ भगत गोविंद बांशत जमना साके जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आ मेली तैरा प्रेम शो जियो श्लोक हर तन पाया सुहागणी डोल तनाही चीत संत संजोगी नानका गृह पलटे प्रमीत नाल बिनोद आनंद कोट प्रे प्रीतम संग बने मन बांशत फल पाया हर नानक ना पने शंत हिम कर उत्मन पावती माघ फगन गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रे आए हर कंत जियो ग्रे लाले आए मनते आए तेज सुंदर सोईया वाण त्रेण त्रिपौन पय हरिया देख दर्शन मोईया मिले स्वामी इश पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो श्लोक संत सहाई जी के फजल तारण हार तब ते ऊचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया
ते ही तरे ते सूरे से वीर नानक तिन बिहारण हर ज उतरे तीर शंत चरण बराजत सब उपरे मिटिया सगल कलेस जियो आमन जामन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर अंग राते सहज माते इलना मन ते बीसरे आप सरणी परे चरणी सर्वगुण जगदीसरे गोविंद गुण श्री रंग स्वामी आदको आदेश जियो बिनवंत नानक मया तारो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली महला पहला दक्षिणी ओंकार एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओंकार ब्रह्म उत्पत ओंकार की आजन चित ओंकार सैल जुग भय ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर निरपमसार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्से सब जग सहज उपाय तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन ले मानक मोती समझे सूझे पड़ पड़ बूझे अंत निरंतर साचा गुरमुख देखे साच संभाले बिन साचे जग काचा तदे धर्म तरे धर्मापुर गुणकारी मन धीरा तदे तूल पड़े मुख मस्तक कंचन पए मनूरा तन तरणी तर आप अजोनी तोल बोसज पूरा करते की मित करता जाने कहे जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिग खाया गो रस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुरस कहया अमृत लया मन तन सार सुखाया आपे गुरमुख आपे देव आपे अमृत पी आया एक को एक कहे सब कोई होमे गर्भ वे आपे अंतर बार एक पछाणे क्यों कर मैल संजापे प्रभ नेड़े हर दूर ना जानो एक को सृष्ट सबाई एक अंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते को क्यों गए राखो अफरे तुल्यो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ ठ गौरी पाई लाभ लोभ मोहताज विगूते एवता फिर पछताई एक सरेवे ता गत मित पावे आमन जान रखाई एक अचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि असरूप एक को पावर पवे त्यो लोए एक को बूझे सूझे पत होए ज्ञान जान ले समसर रहे गुरमुख एक विरला को लहे जिसनु दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊर्म तूर्म जोत उजाला तीन पण में गुर गोपाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपने कर आवे ऊन बरसे निजर तारा उत्तम तब सवारण हारा इस एक का जाने पेओ आपे करता आपे देओ उगवे सूर असर संघारे ऊचो देख शब्द बिचारे ऊपर आद अंत लोए आपे करे कथे सुने सोए ओ विधाता मन तन दे ओ विधाता मान मुख सोए प्राप जग जीवन अवर न कोए नानक नाम रते पद होए अराजन राम रवे हितकार रण में लूजे मनुआ मार रात दिन अंत रहे रंग राता तीन पौन जो चारे जाता जिन जाता सो तिस ही जेहा आत निर्मायल शीष देहा रे सी राम हृदय एक पाए अंतर शब्द साथ लिवलाए रोस न कीजे अमृत पीजे रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना आए जाए जुग चारे रहन कहते रहे न कोई इस पे करो बेनंती एक शब्द राम नाम निरोधर गुरदेवे पतमती लाज मरंती मर गई भूगुट खोल चली साध दीवानी बाबरी सिरते संक टली प्रेम बुलाई रलीसियो मन में शब्द आनंद लारती लाली पई गुरमुख पई निचिंद लहा नाम रतन जब सार लब लोभ बुरा अहंकार लाड़ी चाड़ी लाए तबार मानमुख अंधा मुग्ध गवार लाहे कारण आया जग होए मजूर गया ठगाए ठग लहा नाम पूंजी वे साहो नानक सची पात सच्चा पात साहो आए विभूता जग जम पंथ आई ना मेटन को समरथ आस सहल नीच कर होए आस देख निवे जिह दोए आस होए तामुक्त से आना भगत बिहुना जग बोराना सब में वरते एक को सोए जिसनु कृपा करे तिस प्रगट होए जुग जुग थाप सदा निर्वैर जन्म मरण नहीं तंदा तैर जो दिसे सो आपे आप
آپ اپائے آپے کڑ تھاپ آپ اگوچر تندے لوئی جوگ جگت جگ جیمن سوئی کر آچار سچ سکھ ہوئی نام ہونا مگت کے ہوئی

सुन स्वामी अरदास हमारी, पूछो साच विचारो, रोस ना कीजे उत्तर दीजे, क्यों पाइये गुरुद्वारो। इहो मन चलतो सच कर बैसे,

मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बार जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिरफुन रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बार शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख सा समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार ऐसो गुरु हमारा दुर्मत बादा सरपन खद मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुर मिले अंधेरा जाए नानक हो मैं मेड़।

हुक्मे रहे समाई पूरे गुरते साज कमावे गत मित सब दे पाई आद कौ बिस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले धड़कड़ साचा सर्ब जिया गुर बचनी अवगत समाइये तत् निरंजन सहज लहे नानक दूजी कारना करनी सेवै सिख सो खोज लहे हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणे जी जुत सा जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगतो निर्मायल उपजे

रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले। इस कथा का दे विचार, भवजल शब्द लंघावन हार, पवन आरंभ सदगुरु मत वेला, शब्द गुरु तुरत तुन चेला, अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुर गोपाला। एक शब्द कथा विचारी, गुरमुख हो में अग्न निवारी, मैन के दंत क्यों खाइए सार, जित गर्भ जाए सो कवन आहार। हिवे का घर मंदिर अग्न पिराहन, कावन गुफा जित रहे आवा।

पूर्वस मिटे अंधियारा, सुख दो समकर नाम अधारा, आपे पार उतारण हारा, गुर परचे मनसा समाए, प्रणत नानक काल न काय, नाम तत् सबकी सिर जापे, बिन नावे दुखकार संतापे, तत्तो तत् मिले मन माने, दूजा जाय इगत कर आने, बोले पवना गगन गरजे, नानक नेचल मिलन सहज, अंतर सुनंग भार सुनंग, तिर पमन सुनम सुनंग, चौथे सुनने जो नर जाने, ताको पाप ना पुनंग, काट काट सुन का जा।

सुंदर बचन तुम सुनो शबीली, फिर तेड़ा मन साधारण, दुर्जन से तीन हो रचायो, दस विखा मैं कारण, ऊनी नाही चूनी नाही, नाही किसे विहूनी, फिर शहर शपीला छड गवायो, दुर्मल कर्म विहूनी, ना हो फुली ना हो चुकी, ना मैं नाही दूसा, जित हो लाई तित हो लगी, तू सुन सच संदेशा, साई सुहागण साई भागण, जय फिर कृपा तारी, फिर अवगुण के सब गवाए, गल से ती लाए सवारी, कर्महीन तन करे बेनंती, कद नानक आवे वारी, सब सुहागण माणे रलियां, एक देव रात मुरारी, महला पंजवा, ताही मन तू डोलता, हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख ते आए तू, सब दुख वसारण हार, हर नामा आराधमान, सब किल विख जाए विकार, जिन को पूर्व लिखिया

प्रसाद हर समर्त की सरना जीव पिंड तनरास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाइये जीवने का मूल रब रया सरबत ठाई सुख मो अस्तूल आल जाल विकार ता सब हर गुणा नित गाओ गजोड़ नानक दान मांगे देव अपना नाओ माली गौड़ा महल्ला पंजवां प्रभ समर्थ देव अपार कौन जाने चलत तेरे किस अंत नाही पार रहाओ एखने ताप उथापदा हड़पन करने हार जेत की ना उपार्जना प्रवदान दे दातार हर सरण आयो दास तेरा प्रभ ऊच अगम मुरार कर लिहो पौजल विखमते जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महल्ला पंजवां।

कोय, पूरे या सगल मंडल एक स्वामी सोय, करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ, बलिहार जाए सदा नानक देव अपना नाओ, माली गौड़ा बाणी भगत नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन ओ राम बेन बाजे, मदर मदर तुन अनहत गाजे, रहाओ तन तन मेघा रोमावली, तन तन कृष्ण ओढ़े कामली।

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र है थावा बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रहाओ बुरा पला किस आपस ते जाने ए सगल विकारा यो फुरमाया खजम का हुआ वरत यो संसारा इंद्री तात सबल कहित है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लेवलागी दुबदा तदे बेनासी जुत पाना सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मान अवमाना।

एक सच्चा सब सेवदी तुर पाग मिलावा होए। गुरमुख मेरे से ना विछड़े पावे सच सोए। एक भगती सार ना जाननी मनमुख परम भुलाए। ओ ना मितिया पवरतदा करना किशु ना जाए। जिस नाल जोर ना चलई खले कीचे अरदास। नानक गुरमुख नाम मन वसे ता सुन करे साबास। मारू महला तीजा मारू ते सीतल करे मनूरहो कंचन होए। सो सच्चा सालाइए तिस जेवड़ अवर ना।

दान आए, त्यागो सगला मान महत्ता, दास रेण शरणाए। कहो नानक हर मिल पे एक, महा आनंद सुख पाए। मारू महला पंजवा, कवन थान तीरियो है नामा, कवन बस्त अहंकारा, कवन चेन सुन ऊपर सोयो, मुक्ते सुन कर गारा। सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, एती ना जानो केती मुदत, चलते खबर ना पायो। रघाओ सैन सीर पवन अर पानी, बजदा खिमाने प्राते, पंच तत मिल पयो संयोगा, इन मैं कवन दोराते। जिन रच रचिया पुरख विधाते, नाले हो में पाई, जन्म मरण उसी कौहाय रे, ओहा आवे जाई। वर्ण चेन नाई किश रचना, मिथ्या सगल पसारा, पंत नानक जब खेल उजार है, तब एक एक अंकारा। मारू महला पंजवा, मान मोह अर लोभ विकारा, बियो चीत ना कालेओ, नाम रतन गुण हर बनजे, लाद वखर ले चालेओ। सेवक की ओढ़ किनभी प्रीत, जीव साहेब सेवो अपना, चलते रखो चीत रहाओ। जैसी आज्ञा की नहीं ठाकुर, तिस्ते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो ग्रे पीतर, उठ ओवाहू कौ दौरियो। आज्ञा मैं पूख, सोई कर सूखा,

दीनानाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस ही निस्तारण अंध कूब ते काढ़न हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन धारिया महा अगन ते आप उबारिया जब तब संजम इस ते किश नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही।

आवर सब कुछ मिथ्या रसना, राम राम वखान मेरे मन, करन सुन हर नाम, मिटे अगत तेरे जन्म जन्म के, तमन बपरो जाम रहाओ। दुख दीन ना पौ ब्यापे, मिले सुख विश्राम, गुर प्रसाद नानक बखाने, हर भजन तत ज्ञान। मारू महला पंजवा, जिन्नी नाम सारिया, से होत देखे खेहे, पुत्र मित्र बिलास बनता, तूड़ते ए नेह, मेरे मान नाम नित नित लेह, जल तनाही अग्न सागर, दुख मन तन देह रहाओ। बिरख छाया जैसे बिनसत, पवन चूलत मेह, हर भगत दृढ़ मिल साध नानक, तेरे काम आवत एह। मारू महला पंजवा।

बिना को कछ नहीं, गुरपूरे पूरी मदकीन रहाओ। अवगुण सुबर गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज सब सुख उपजे, बिन भागा तन नाहे। जिनके नाम ना मन बसे, से बादे दुख सहाहे। जिन्हीं नाम सारिया, ते किताए संसार। आगे पासे सुख नहीं, गाडे लादे शार। विछड़िया मेला नहीं, तू कणु जमद्वार। अगे क्या जाना नाहे, मैं भूले तू समझाए। भूले मार्ग जो दसे, तिसके लागो पाए। गुरबिन दाता को नहीं, कीमत कहण न जाए। साजन देखा ता गल मिला, साच पठायो लेख। मुख तिमाणे तन खड़ी, गुरमुख आखी देख। तुद पावे तू मन वसे, नदरी कर्म वसेख। भूख पिया सो जे पवे।

गुरपूरे सा वास है, काटे मन पीरा, लाला गोला तनी को क्या कहो बड़े आई है, भाणे बक्से पूरा तनी, सच कार कमाइए, विछड़िया को मेल लय, गुर को बर जाइए, लाले गोले मत खरी, गुर की मत निकी, ताती सुरत सुहावनी, मानमुख मत फीकी, मन तन तेरा तू प्रभु, सज तीरक तुरकी, सचे बैसन उठना, सच भोजन भाख्या, चित सचे वितो सचा, साचा रह चाख्या, साचे घर साचे रखे, गुर बचन सुपाख्या, मनमुख आलस घणो, फाथे उजाड़ी, पाथा चुगे न चोगड़ी, लाग बंद विगाड़ी, गुर प्रसादी मुक्त होए, साचे ने ताड़ी, अनहत लाला बिदया, प्रभगेत प्यारी, बिन साचे जियो जल बलो, झूठे वेकारी, बाद कारा सब छोड़िया, साची तरतारी, जिन्नी नाम सारिया।

रगाओ हे गुण विसर गए अपराधी मैं बोरा क्या करो हरे तू दाता दयाल सबे सेर आहे निस दात सुमार करे चार पदार्थ लय जग जन्मया शिव शक्ति कर वास तरे लागी भूख माया मुग जोह मुग्ध पदार्थ मोहे करे कारण पलाव करे नहीं पावे एत उद ढूंढत थाक परे काम क्रोध अंकार वे आपे कूड़ कुटां स्यो प्रीत करे खावे पोगे सुन सुन देखे पैर दिखावे काल करे बिन गुरु शब्द न या पछाण है बिन हर नाम ना काल टरे जेता मोह में कर भूले मेरी मेरी करते शीन करे तान तन बिन सह सहसे सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरध पया जोबन तन खिसिया ताप कंठ बरुद्ध नैनो नीर टरे चरण रहे कर कंपन लागे साग त्राम न हृदय हरे तुरत गई काली हूं तौले इसे न पावे रखियो करे विसरत नाम ऐसे दुख लाग है जाम मार सुमारे नरक खरे पूर्व जन्म को लेख न मिटई जन्म मरे का को दोष तरे बिन गुर बाद जीवन हो मरना बिन गुर शब्दे जन्म जरे खुशी खुआर पैरस भोगण होगट कर्म विकार करे ना विसार लोभ मूर्ख होयो सिर धर्म राय का दंड परे गुरमुख राम नाम गुण गावे जा को हर पर नदर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुर गोविंद हरे हर सिमरहो गुर भजन सुमारहो संगत हर जन पाओ करे हर जन गुर प्रधान द्वारे नानक तीन जन की रेन हरे एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

युगत सुजान स्वामी सदा राखण हार दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिखना पोहे ताहे रिद्ध सिद्ध नवनिध जा कहे अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुंजा वेद करे उचार तेमर स्वामी सुख सहज पुंच नहीं अंत पारा वार अनक प्राशित मिटे खिन मह हृदय जप भगवान पावना ते महापावन ओड़दान इसनान बर बुद्ध सुध प्राण सर्वस संतना की रास बिस

तले उगाए बैसे हो, शरम ना रहे हो शरीर, मां सागर नए व्यापे किने उतरो तीर, चंदन अगर कपूर लेपन ते संगे नहीं प्रीत, दिष्टा मूत्र खोद तेल तेल, मन ना मनी विपरीत, ऊच नीच विकार सुकृत, संग लगन सब सुख शत्र, मित्र सतर ना कछु जाने, सर्व जी समत कर प्रगास प्रचंड प्रगटेओ, अंधकार विनाश पवित्र अपवित्र है करण लागे, मन ना पयो विकात, सीत मंद सुगंध चलेओ, सर्व थान समान जहां साक्ष तहां लागेओ, तिल ना संका मान तो पहाए अपहाए जो निवटे आवे, सीत ताका जाए आ पर का कश ना जाने, सदा सहज सुपाए चरण सरण सनात त्यो मान।

चौथा अष्टपदियां, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, चांदना चांदन आंगन, परजीव अंतर चांदना, आराधना आराधन नीका, हर हर नाम आराधना, त्यागना त्यागन नीका, काम क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगन नीका, हर जस गुर ते मांगना, जागना जागन नीका, हर कीर्तन मैं जागना, लागना लागन नीका, गुर चरणी मन लागना, ए बेद तिसे परापते, जाके मस्तक भागना, कहो नानक तेस सब कुछ नीका, जो प्रभु की शरणागना, मारू महला पंजवां, आओ जी तू आओ हमारे, हर जस श्रवण सुनावना, रहाओ तुद आपत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संगावना, संत कृपा ते हिरदय वस, दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुद्ध परगस, दुरमत दूखत जावना, दर्शन पेटत होत पुनीता, पुनरप गर्भ न पावना, नौ निध रिद सिद्ध पाई, जो तुमरे मन पावना, संत बेरा में थाव न कोई, अवर न सूझे जावना, मुए निर्गुण को कोई न रख, संता संग सुमावना, कहो नानक गोर चलत दिखाया, मन मध्य हर हर रावना, मारू महला पंजवा, जीवना सबल जीवन, सुन हर हर जप सा जीवना, अरहाव पीवना जित मन आगावे, नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख न लागे, संतोख सदा तृप्तीवना, पहनना रख पद परमेश्वर, फिर नांगे नहीं थीवना, पोगना मन मध्य हारस, संत संत मैं लीवना, बिन तागे बिन सूई आनी, मन हर भक्ति संग सीवना, मातिया हर रस में राते, बौड़ न कभू औखीवना, मिलो तिस सर्ब निधाना, प्रभु कृपा जिस दीवना, सुख नानक संतन

गुण में गुणी समाया, ए जग में मोह है पासारा, मानव अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, दिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुर पाए, होमे मैल शब्द जलाए, मान निर्मल क्या रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम

बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है, जय जय कार्ज पो जगदीस, बल बल जाई प्रभ अपने ईस, इस बिन दूजा अवर न दीस, एका जगत सुबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता, सेमर सेमर जीवे जन तेरे, एक अंकार समाई है, भगत जना का प्रीतम प्यारा, सबे उदाहरण खसम हमारा, सिमर ना पुन्नी।

एक भूखे एक तृप्त अघाए सबसे तेरा पारणा आपे सत सत सत साचा ओत पोत भगत संगराचा आपे गुप्त आपे गए प्रगट अपना आप सारणा सदा सदा सद हो मनहारा ऊंचा अगम अथाओ अपारा ऊने परे परे पर ऊने ये चलत स्वामी के कारणा मुखसाला ही सच्चे साहा नैनी पेखा अगम अथाहा करनी सुन सुन मन तन हरिया मेरे साहेब सगल उदाहरणा कर कर वेखे कीता अपना जी जंत सोई है जपना अपनी कुदरत आपे जाने नदरी नदर निहालना संसभा जे वैसे प्रापासे आनंद मंगल हर चलत तुमासे गुण गावे अनखद तुन बाणी ते नानक दा चितारना आमन जाना सब चलत तुम्हारा कर कर देखे खेल अपारा आ उपाय उपामनहारा अपना की आ पालना सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी सदा सदा जाई बलिहारी दुए कर जोड़ सिमरो दिन राती मेरे स्वामी अगम अपारना तुद बिन दूजे के सालाही एको एक जपी मन माही हुक्म बूझन पए निहाला ए भगतां की कालना गुर उपदेश जप के मन साचा गुर उपदेश राम रंग राचा गुर उपदेश टुटे सा बंधन यो परम मोह पर जालना जय राखे सोई सुखथाना फे जे होए सोई पल माना बिन से बैर नाही को बैरी सब एको है पालना डर चूके बिन से अंधियारे प्रड पए प्रापुरख निरारे आव जोड़ पए सरनाई जिसका साथ कालना ऐसा कोवड़ पागी आया आड़ पैर इन खदम त्याया ते जन के संग तरे सब कोई तो परवार सुधारना ए बख्शीस खदम ते पावा आड़ पैर कर जोड़ त्यावा नाम जपी नाम सहज समावा नाम नानक मिले उचारना मारू महला पंजवा सूर देखना पूल गवारा मिशन मुहारा चूड़ पसारा जग में कोई रहन न पाए नेचल एक नारायणा गुरपूरे की पौसरनाई मोसूसा परम मटाई एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना जिस नामे को तरसे वो देवा सगल पत जा की कर दे सेवा अनाथा नाथ दीन दुख पंजन तो गुरपूरे ते पायना होर दोबारा कोई न सूझे तिर पवन तावे ता किसू न बूझे सतगुर साओ भंडार नाम जिस यो रतन तसे ते पायना जाकी तूर करे पुनीता तुर नर देव न पावे मीता सत पुरख सतगुर परमेसर जे भेड़त पार परायणा पार जाद लोड़े मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे तृप्त संतोष सेवा गुरपूरे नाम कमाए रसायणा गुर कह शब्द मरे पंच धातु पए पार ब्रह्म होवे निर्मला तू पार जा फेटे गुरपूरा ता पारस प्रसिद खायना कई बैकुंठ नाही लवे लागे मुक्त बपड़ी पी गया नी त्यागे एकंकार सब गुर ते पाई है हों बल बल गुर दरसायना गुर की सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई जिसनु लाए लए सो सेवक जिस बड़ पाग मथायना गुर की महिमा वेद न जाने तुश मात तू सुन वखाने पार ब्रह्म अपरम पर सदगुर जिस सिमरत मन सीतलायना जाकी सोए सुनी मन जीवे

करो दया किरमायण निर्गुण को संग लेर लाए कर कृपा मुहे टहले लाए पखा फेरो पीसो संत आगे चरण तोये सुख पायना बहुत द्वारे प्रम प्रम आया तुमरी कृपा ते तुम शरण आया सदा सदा संते संग रख हो यो नाम दान देवायना पै कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे सुख सहज सदा आनंदा नानक दास दसायना मारू सोलहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरे धरती अर आकाशा सिमरे चंद सूरज गुण तासा पौन पानी बैसंतर सिमरे सिमरे सगल उपार जना सिमरे खंड दीप सब लोवा सिमरे पाताल पुरिया ससोवा सिमरे खाणी सिमरे बाणी सिमरे सगले हर जना सिमरे ब्रह्मे विष्णु महेशा सिमरे देवते कोड़ते तीसा सिमरे जख दैंत सब सिमरे अगणत न जाई जस गना सिमरे पस पंखी सा पूता सिमरे बाण पर्वत अवधूता लता बली साग सब सिमरे हरव रैया स्वामी सा मना सिमरे थूल सूखम सब जनता सिमरे सिर साधक हर मंता गोवत प्रगट सिमरे प्रा मेरे सगल पवन का प्रवतना सिमरे नर नारी आसरमा सिमरे जद जोश सा वरना सिमरे गुणी चित्र सा बेते सिमरे रैणी अर देना सिमरे घड़ी मूर्त पल निमखा सिमरे काल अकाल सोच सोचा सिमरे सुन सा तिर संयोगा अलख न लगिए एक खिना करन करामन गार सुवामी सगल कटा के अंतर जामी कर कृपा जिस भगती लाव जन्म पदार्थ सोजना जाके मन रूठा प्रव्यापना पूरे कर्म गुर का जप जपना सर्व निरंतर सुप्रा जाता बोढ़ न जोनी परम रोना गुर का शब्द से मन जाके दुख दर्द प्रमता का भागे सुख सहज आनंद नाम रस आनंद वाणी सहे तुना सो तनवंता जिन प्रत्याया सो पतवंता जिन साध संग पाया पार ब्रह्म जाके मन उठा सो पूर्व कर्मा नाशिरा जल थल मैल स्वामी सोई अवर न कही गए दूजा कोई गुर ज्ञान अंजन काट्यो प्रो सगला अवर न दिसे एक बिना ऊचे ते ऊचा दरबारा तैन न जाई अंत न पारा गैर गंभीर अथा स्वामी अतुल न जाई क्या बिना तू करता तेरा सब किया तुझ बिन अवर न कोई बिया आद मध अंत प्रा तू है सगल पसारा तुम तना जम दूत किस निकट न आवे साध संग हर कीर्तन गावे सगल मनोरथता के पूर्ण जो श्रवणी प्रभ का जस सुना तू सबना का सब को तेरा सच्चे साहिब गैर गंभीरा कौ नानक सेई जन उत्तम जो पावे स्वामी तुम मना मारू महला पंजवा प्रसमरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेहरबाना हर दाता जी जंत पेखारी जान बांछे जा चंगना मांगो जन तूर परम गत पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिटे हर औखद हर निर्मल रापे मंगना श्रावणी सुनो बिमल जा स्वामी एका ओट तजो बिख कामी निव निव पाए लगो दास तेरे कर सुकृत ना ही संगना रसना गुण गावे हर तेरे मिटे कुमाते अवगुण मेरे सेमर सेमर स्वामी मन जीवे पांच दूत ताज तंगना चरण कवन जा बोहत चरिये संत संग मेरे सागर तरिये अर्चा बंधन हर संत निवासी बौड़ जोन ना नंगना दास दासन को कर लेहो गोपाला कृपा निधान दीन दयाला सखा सहाई पूर्ण परमेश्वर मिल कदे न हो भी पंगना मान तन अर्प करी अरागे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत्यागी हो मे हंतना जल त पूर्ण अंतर जामी खड़का रवे अशल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रवे असर मंगना जल कद पेखो प्रभ सुख सागर हर तोड़ भंडार ना ही रतनागर आगे अगा कश्मित नहीं पाइये तो बूझे जिस किर पंगना जाती शीतल मन त ठंडा जन्म मरण की मिटवी डंजा कर गे काढ़ लिगे प्रवे अपने अम्यो तार धिर टंगना एको एक रवैया सब ठाई जिबन दूजा कोई नाही
ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਵਰਵਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੂਜੀ ਪਰਮੰਗਨਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਭਗ ਸੰਦ ਗੁਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆਨ ਦੀਪਕ ਸੰਤ ਸੰਗਨਾ ਜੋ ਪੇਖਾ ਸੋ ਸਭ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਨੀ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਤੁਮੇ ਕਰਾਇਓ ਸਰਣ ਸਹਾਈ ਸੰਤ ਹੈ ਤਨਾ ਜਾਤਕ ਜਾਤੇ ਤੁਮੇ ਆਰਾਧੇ ਪਤ ਪਾਵਨ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਏਕੋ ਦਾਨ ਸਰਬ ਸੋ ਗੁਣ ਨਿੰਦ ਆਨ ਮੰਗਰਨ ਹੈ ਕਿੰਚਨਾ ਕਾਇਆ ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਲੱਗੀ ਲਾਗ ਸੰਤ ਸੰਗਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਬਣੀ ਗਰਬਾਣੀ ਮਨ ਨਾਮ ਜੀਠੇ ਰੰਗਣਾ ਸੋਲ ਹੈ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਿਆ ਅੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜਿਆ ਅੰਧ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਪੁੰਚਨਾ ਮਾਰੂ ਸੋਲ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸੇਵਕ ਕੀਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਦੀਤਾ ਕਰਨ ਕਰਾਮਨ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਹੈ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਅਸਾੜਾ ਤੁਮੇ ਪਠਾਏ ਤਾਂ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਜੋ ਤੁ ਪਾਣਾ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ਼ੂ

आप खपावे तो लेप नहीं एक तिल रंगा, एक जी गुण कमन बखाने, सहज पनी सिर अंत न जाने, नवत नाम जपे दिन राती, ए गुणा ही प्रभु के संगा, ओढ़ गही जगत पे शरणाया, पय पयान जम दूध दूत रहे माया, हो कृपा इच्छा कर रखो, सा संतन के संग संगा, दृष्ट मान के सगल मथेना, एक मांगो दान गोविंद संत रेना, मस्तक लाए परम पद पावो, जे प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लैर दे पराते, सगल नाम दान तिन पाया, अनघा शब्द मन वाजंगा, किरतम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला, कहो नानक भगत पय शरणाई, दियो दर्श मन रंग लगा, तेरी गतमत तू है जान है, तू आपे कथे ते आप बखाने, नानक दास दासन को करियो, अर पावे दासा राज संगा, मारू मोहल्ला पंजवां, अल्ले अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे, होए पै खाक फकीर मुसाफर, यो दरवेश कबूल दारा, सच निवाज यकीन मुसल्ला, मनसा मार निवार्यो आसा, दे मसीत मन मौलाना, कलम खुदाई पाक खरा, सरा सरीयत ले कमाव हो, तरीकत तरक खोज टोलाव हो, मारफत मन मारो अबदाला, मिलो हकीकत जिद फिर ना मरा, कुरान कतेब दिल माए कुमाही, दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदकले बद हो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेर रोजा पै खाका, इस्त पीर लफ्ज कुमाए अंदाजा, हूर नूर मुजग खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा, सच कुमावे सोई काजी, जो दिल सोदे सोई हाजी, सो मुल्ला मल ऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफत तरा, सबे वस्त सबे करवेला, खालक याद दिले म

तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा, इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार तजाए, ते जन को उपदेश निर्माल का, तुद बिन नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा, हों बलिहारी सदगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रा बिसरे नाही, आड़ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का, मारू महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदे नितारी, गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी, तान मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यो मनो विसारे, जियो पिंड दे सास सवारे, सास ग्रास समाले, करता कीता अपना पावना, जाते बिरता को नाही, आड़ पैर हर रख मन माही, साध संग पाच अचुत स्वामी, दरगे सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सह सुख नौ निध, सर्व कल्याण जे मन में चाह है, मिल साधु स्वामी रावणा, सास्त सिमरत वेद बखाणी,

न कोए, पूछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोए। सतगुर साचा मन वसे साजन उत ही ठाए, नानक मन तृप्ता सीए।

जे लोचे सब कोए नानक मन ही कौ मन मारसी जे सतगुर पेटे सोए पौड़ी दोवे तरफा उपाई होन विच सगत से वस सगती किने ना पायो फिर जन्म बेनास गुर सेवे सांत पाई है जप सास गिरास सिमरत सास्त सोध देख

दाम लया आड दाम किस पाया ना बोलक जागा तिया मोहन मुंदन पई पाई हम करे क्या किस पास मांगे सब भाग सदगुर पिछे पई जागातिया उपाव सियाणप कर विचार डिठा पान बोल का सब उठ गया तृतीया आए सुरसरी तय कौतक चलत पया मिल आए नगर महाजना गुर सदगुर ओट गही गुर सदगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत सातर सबनी सही कीता सुख प्रहलाद।

माई संत संग जागी प्रे रंग देखे जपती नामन धानी रहाओ। दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी आओ गुर पायो हुए सहज सुखदायक।

सदगुर प्रसाद बिसरत नाहे मन ते हरी आबे प्रीत महा प्रबल पई आन विखे जरी रघाओ बूंद का त्याग चातरक मीन रहत ना करी गुण गोपाल उच्चा रसना टेव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रचरण कमल रसाल नानक गांठ बांध थरी केदारा महला पनवा प्रीतम बस्त।

संत संग हर चरण बोहित उदरते लय मोर गर्भ कुंट मैं जिने तारियो नहीं बिखे बन मैं होर हर सगत सरन सुम।

इन्हीं लोग सुपारी संतो बन जा नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोल छूट गई संसारी रगाओ ताते लाए तो सच लागे साचे के व्योहारी साचे।

पाया। जैसे खूंद कुमारी काम क्रोध तृष्णा के लीने, गतनी एक जानी फूटी आँखें कछु ना सूझे।

ठिया मटिया संग न कछ ले जाए रखाओ। देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लव संगमाए, मा हट लग सब लोग कुटंब मेल हंस अकेला जाए। वय सुत वय बित वय पुरपाटन बौर न देखे आए, कहे त कबीर आराम की।

रूप रंग रेस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, प्राणी हर जप जन्म गयो, साच शब्द बेन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ, तन में काम क्रोध हो ममता, कठिन पीर अद पारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे करण अकल पई होची, साबद सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम लेव लागी, भैरो महला पहला, ढूंढी चाल चरण कर खिसरे।

को दर कार कभू न जानस, एको दर्श त्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कहे विचारा भैरों महला पहला, अगली रैन सोबत गल फाही, दिन सजंजाल गवाया, खेन पाल कड़ी नहीं प्रो जानिया, जिन एहो जगत उपाया, मान रे क्यों छूटस दुख पारी, क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपो गुणकारी रगाओ, ऊन दो कावल मानमुख मत होची, मन अंधे सिर तंदा, काल विकाल सदा सिर तेरे, बिन नावे गर फंदा, डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, साबद सुरत नहीं पाई, सातर वेद त्रै गुण गए माया, अंधलो तंद कुमाई।

ते काल करे, बिन गुर शब्द मुक्त खां प्राणी, राम नाम बेन उर्ज मरे, डांड कमंडल शिखा सूद तोती, तीर्थ गमन अद प्रमण करे, राम नाम बेन सांत न आवे, जप हर हर नाम तो पार परे, जटा मुगट तन पसम लगाई, बत्र छोड़ तन नगन पया, राम नाम बिन तृप्त न आवे, किरत के बंदे भेस पया, जेते जी जंत जल थल मईल, जतर कतर तू सर्व जिया, गुर प्रसाद राख।

का आकारा काटवद को करे बिचारा तहत नानक इहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न होई। भैरो मोहल्ला तीजा जोगी गृह पंडित पेख तारी ए सूते अपने अहंकारी माया बदमाता रहे आसोए जागत रहे ना मूसे कोए रहाओ तो जागे जिस सतगुरु मिले पंच दूत ओ वसगत करे सो जागे जो तत विचारे आप मरे अवरा नहीं मारे सो जागे जो एको जाने प्रकृत छोड़े तत पछाणे क्यों वरना विच जागे कोए जमे काले ते छूटे सोए कहत नानक जन जागे सोए ज्ञान अंजन जा की नेत्री होए। भैरों मोहल्ला तीजा जा को रखे अपनी शरणाई।

केते बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रै गुण सबे रोग वे आपे ममता सुरत गवाई। एक आपे काड लए प्रभ आपे गुर सेवा प्रभ लाए, हर का नाम निधानु पाया सुख वसिया मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तेन निरकर वासा पाया, पूरे सदगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक की सिरकार एक जिन ब्रह्मा बिशन रुद्र उपाया, नानक नेचल साचा एकु ना ओ मरे ना जाया। पैरो मोहल्ला तीजा मानमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे। गुर शब्दी विचारा हर जियो

खड़ग कर ताया आत अंकार हर तेरा कहां तुझ लय उबार खिन मैं भयान रूप निक्षा थम उपाड़ हरणागस नहीं बिदारिया प्रहलाद लिया उबार संत जना के हर जियो कार्ज सुवारे प्रहलाद जन के एक ही कुल उधारे गुर के शब्द होमे बिखमारे नानक राम नाम संत निस्तारे।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, ना बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, ना बिना साध सड़गी चूरे, बिन गुरु दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे को कैसो ध्यान, बिन

मन प्रगट पया नाम लए पावतन ते गया नाम लएत सगल पुरबाया नाम लएत अड़सठ मजनाया तीर्थ हमरा हर को नाम गुर उपदेशा तत् ज्ञान रघाओ नाम लएत दुख दूर पराना नाम लएत आत मूढ़ सो ज्ञाना नाम लएत प्रगट उजियारा।

सगल जना की हर हर टेक, मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जे दे वे नाओ, भैरो महला पंजवा, निरतन कहो तुम देवो तना, अनक पाव जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन करामन गार स्वामी।

अंतरजामी साचा सोए, तेरी टेक तेरा मनतान, ईगा ऊहा तू दीबान, तेरी टेक तेरा परवासा, सगल त्याव है प्रभु गुणतासा, जब जब अंध करे तेरे दासा, सिमर नानक साचे गुणतासा, भैरो महला पंजवां, परस में छोड़ी प्राई निंदा, उतर गई सा मन की चिंदा, लो मोसव की नो दूर, परम वैष्णो प्रापे खजूर, ऐसो त्यागी विरला कोए, हर हर नाम जपे जन सोए रहाओ, अंग बुद्ध का छोड़या संग, काम क्रोध का उतरया रंग, नाम त्याए हर हर हरे, साजना के संग निस्तरे, बैरी मीत होए सम्मान, सर्वमय पूर्ण भगवान, प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, हर कृपा जिस राखे आप, तोई भगत जपे नाम जाप, मन प्रगास गुर ते मत लई, कहो नानकता की पूरी पई, भैरो महला पंजवां, सुख नाही बहुते तन खाटे, सुख नाही पेखे नृत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सुख सहज आनंद लहो, सा संग पागे वडभागी, गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ। बंधन माल पिता सुध बनता, बंधन कर्म तरमो करता, बंधन काटनहार मन वसै, तौ सो पावे निज कर बसै, सब जाजक प्रादे मनगार, गुण निदान बेंत अपार, जिसनु कर्म करे प्रव्यापना, हर हर नाम तिने जन जपना, गुर अपने आगे अरदास, कर कृपा पुरख गुणतास, कहु नानक तुमरी शरणाई, ज्यों पावे त्यों रखो गुसाई, भैरो महला पंजवां, गुरमुख त्यागो दूजा पाओ, गुरमुख जप्यो हर का नाओ, बिसरी चिंत नाम रंग लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, कार कृपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए, हरहाओ रोग दोख गुर शब्द निवारे, नाम औखद मन पीतर सारे, गुर पेड़त मन पया आनंद, सर्वन दान नाम भगवंत, जन्म मरण की मिटी जमत्रास, साध संगत ऊंद कवन विगास, गुण गावत निचल विश्राम, पूर्ण होए सगले काम, दुलभ दे आई परवान, सफल होई जप हर हर नाम, कहो नानक प्रभु कृपा करी, सास ग्रास जपो हर हरी, भैरो महला पंजवां, तब ते ऊंचा जा का नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जे सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख बसे मन आए, सिमर मना

राम नाम रिद्ध दियो निवास, सदा आनंद नाही किज सोग, दुख दर्द न व्यापे रोग, तब के तेरा तू करने हार, पार ब्रह्म अगुण अपार, निर्मल शोभा अचरज बाणी, पार ब्रह्म पूर्ण मन पानी, जल थल महील रविया सोए, नानक सब जि प्रवते होए, भैरो महला पंजवा, मन तारा ता राम रंग चरणे, सर्व मनोरथ पूर्ण करने, आठ पैर गावत भगवंत, सगुर दीनो पूरा मंत, सोवड़ भागी जिस नाम प्यार, तिसके संग तरे संसार, रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरे एक, तो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, तो कुलवंता जे सिमरे स्वामी, सो पतवंता जे आप शानी, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल निरहिन ते आया, टूटे बंधन पूर्ण आसा, हर के चरण हृदमाय निवासा, कहो नांग जाके पूर्ण कर्मा, सो जन आया प्रभु की सरना, आप वित पाम सब कीने, राम रसायन रसना ची

चरण निवास निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ रसक रसक हर के गुण गाओ हरहाओ हर सिमरत कि चाख ना जोह हर सिमरत दायत दो ना पोह हर सिमरत मोह मान ना बधे हर सिमरत गर्भ जोन ना रुद्धे हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बो माई अकेला जात अजात जपे जन कोए जो जापे तिसकी गद होए हर का नाम जपिगे साध संग।

निमखना छोड़े सदगी साथ हर सा प्रीतम अवर ना कोय सार संभाले साचा सोए माल पिता सुत बंद नारायण आद जुगाद भगत गुण गायन इसकी धार प्रभु।

ही भगत करो जन शरण तुम्हारी। नाओ वीर माया नाओ मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी। नाओ मेरे बंत पनाओ मेरे पाई, नाओ मेरे संग अंत होए सगाई।

आए। ऐसा ज्ञान विचार मना, हर की ना सिमरो दुख पंजना। अहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे, तब लग बन फूले ही नाहे। जब ही स्या

गढ़ पीतर यूं गढ़ लियो न जाई, प्रेम पलीता सुरत होवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अग्न सहजे पर जाली, एक चोट सजाया, सात संतोख लै

विद्या कोट सबे गुण कहे, तऊ पार ब्रह्म का अंत न लहे, बावन कोट जाके रुमावली, रामन सयना जयते शली, सहस कोट भो करत पुराण, दुर्योधन का मथिया मान, कंदर्व कोट जाके लवे न तरह, अंतर अंतर मनसा हरे, कहे कबीर सुन सार्ग पान, दे अपय पद मांगो दान, भैरो बाणी नाम दियो जियो की, कार पहला एक ओंकार, सदगुर प्रसाद।

भगत जना को देवरा फिरे, भैरों नाम देव जियो, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखाबंद जल सेती काज, जैसी

भुवना तूड़स रहया समाए, नामे चित लाया सच नाय, जैसी प्रीत बार्ग अर माता, ऐसा हर चित्ती मन राता, परमे नाम देव

रेठानी दुट सवा मेल मंत्र उपाया करसे औध कनेरी गिर तार जाल ज्वाला पै राख्यो राजा राम माया फेरी काड खड़ग काल पै कोप्यो मोए बताओ जो तुहे राख पीत पीतांबर तिरपावन तनी थंब माए हर पाखे हरनाक्ष जन नखे बदारियो।

साखा हरी धर्म फूल फल ज्ञान पद प्राप्त शाप कणी चूका मन अभिमान अखी कुदरत कन्नी बाणी मुख

संत प्यारी जे तू पढ़िया पंडित बीना दोए अखर दोए नावा परमत नानक एक लंघाए जे कर सच समावा बसंत हिंडोल महला पहला राजा बालक नगरी काती दुष्टा नाल प्यारो दोए माई दोए बापा पढ़िए पंडित करो बिचारो स्वामी पंडता तुम देहो मती किन बिद पाओ प्राण पति रघाओ पीतर अगन बनस्पत मौली सागर पंडय पाया चंद सूरज दोए करही पीतर ऐसा ज्ञान न पाया राम रवंता जानिए एक माई भोग करे ताके लखन जानिए खिमा तन संग्रेह कया सुने ना खाया मन है।

रह न सको दर्शन देखे बेन, सहज मिलो गुरमेल मिलाए, अरहाओ यो मन लोभी लोभ लुभाना, राम सार बौर पछताना, बिछिरत मिलाए गुर सेव रंगे, हर नाम दियो मस्तक उड़ पागे।

जग जीवन स्यों आप चित लाए, मन तन हरिया सहज सुपाए, नानक नाम रहे लिवलाए। बसंत महला तीजा भगत वछर हर वस्ते मन आए, गुर कृपा ते सहज सुपाए, भगत करे विचों आप खोए, तद की सात मिलावा होए। भगत सोह है सदा हर प्रद्वार, गुर कै हेत साचे प्रेम प्यार, अरहाओ भगत करे सो जान निर्मल होए, गुर सबदी विचो होमे खोए। हर जीव आप से मन आए, सदा सांत सुख सहज समाए, साच रते

गुर सब्दी हर चेत सुभाए, राम नाम रस रहे अघाए, कोड़ कुटंत्र के पाप जल जाहे, जीव तुम्हारे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने, गुर के शब्द एहो मन मोलिया, हर गुण दाता नाम खाने रहाओ, भगवे वेश प्रा मुक्त न होए, बहु संजम सांत न पावे कोए, गुरमत नाम प्राप्त होए, वडभागी हर पावे सोए,

सदगुर पेटे मत बुद्ध होए, हर जू आपे लेहो मिलाए, गुर के शब्द सच नाम समाए, अरहाओ मन बसंत हरे सब लोए, फले फुलिगे राम नाम सुख होए, सदा बसंत गुर शब्द विचारे, आराम नाम राखे उर थारे, मन बसंत तन मन हरिया होए, नान इव तन बिरख आराम नाम फल पाए सोए, बसंत महला तीजा तेन बसंत जो हर गुण गाए, पूरे भाग हर भगत कराए, इस मन को बसंत की लगे ना सोए, इव मन जलिया दूजे दोए, अरहाओ इव मन तंदे बंदा कर्म कमाए, माया मूठा सदा बिरलाए, इव मन छूटे जां सतगुर पेटे, जम काल की फिर आवे ना फिट, इव मन छूटा गुर लिया छडाए, नानक माया मोह शब्द जलाए, बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बनराए, ए जी जंत फूले हर चित लाए, इन बिद इव मन हरिया होए, हर हर नाम जपे दिन राती, गुरमुख होमे कड्डे धोए रहाओ, सतगुर बाणी शब्द सुनाए, इव जग हरिया सतगुर पाए, फल फूल लागे

प्रभु देहे साध संगत में यो विश्राम सदा हृदय जपी प्रभ तेरो नाम तुझ बिन दूजा कोई नाहे सब तेरो खेल तुझ में समाहे।

साधु संगत गुरे बताई ऊहां जपिए केवल नाम। साधु संगत पार ग्राम सगल तत् में तत् ज्ञान। सर्व ध्यान में एक ध्यान हर कीर्तन में उत्तम तुना। नानक गुरमिल गाए गुना बसंत महला पंजवा। जिस बोलत मुख पवित होए जिस सिमरत निर्मल गए सोए जिस

तेरा दिया सब जंत खाहे अंतरजामी प्रभ दयाल अपने दास को नदर निहाल कर कृपा मुझ देहु दान जब जीवे नानक तेरो नाम बसंत मगल्ला पंजवा आराम रंग सब गए पाप राम जबत कछ नहीं संताप गोविंद जबत सब मिटे अंधेर हार सिमरत कछ नाहे फेर बसंत हमारे राम रंग संत जना

प्रकाट मैल निर्मल करे, गुरपूरे की सरणी परे, आप करे आप करने हारे, तर कृपा नानक उधारे।

अनिर्माल निर्मल नाव घर में घर जो देख दिखावे गुरमैली सो मैल बुलावे मन में मनुआ चित में चीता ऐसे घर के लोग अतीता हर्ग सोगते रहे निराशा अमृत चाख हर नाम निवासा आप शान रहे लिवलागा जन्म जीत गुरमत दुख भागा गुर दिया सच अमृत पीवो सहजे मरो जीवत ही जीव।

तेरो कहू नाहे, पंच मार चित रखो थाए, जो जुत की ए पाए, होमे पैखड़ तेरे मने माहे, हरना चेते मूड़े मुक्त जागे, मत हर विसरे जम वस पाहे, अंत काल मूड़े चोट खाहे, गुर शब्द विचार है आप जाए, सा योग मन वस्ते आए, जिन जियो पिंड दिता फिर चेतै नाहे, मड़ी मसानी मूड़े जोग नाहे, गुण नानक बोले पली बाण, तुम हो सुजाखे लियो पछाण, बसंत महला पहला दुबदा दुरमत अंधली कार, मानमुख परमे मज गुबार, मन अंधला अंधली मत लागे, गुर करणी बिन परम न भागे रगाओ, मानमुख अंधले गुरमत न पाई, पशु पै अपमान न जाई, लग चौरासी जंत उपाए, मेरे ठाकुर पाणे सिरज समाए, सगली पूले नहीं शब्द अचार, सो समझे से गुर करतार।

नाई उधरे सैन सेव मन डीग ना डोले कहूं जाए मन तू पी तरसे शरण पाए जे अनुग्रह ठाकुर कियो आप से तैलीने भगत राख तिनका गुण अवगुण ना बिचारे कोए एवद देख मन लगा सेव तबीर त्यायो एक रंग नाम देव हर जीव बसे संग रवदास ते आए प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवां अनक जन्म प्रमे जून माहे हार सिमन बिन नरक पाहे भगत बिहूना खंड खंड बिन बूझे जम देत डंड गोविंद पजो

दू सुग बांधव संसार मन उदरण का साज नाहे पाबंदन नित पौत जागे ईठ मीत को सखा नाहे आ बीज आपे ही खावे जाके तीने होत बेकार ते छोड़ चलिया खिन मह गवार माया मोह मोह भरमिया किरतरे कर करमिया करने हाँ।